नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने दी 13 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 4 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से वेला हो रहा है प्रोग्राम वंदना नू सरवन करन दा। आओ प्रोग्राम ते इस सफर दा आगाज करने मूल मंत्र दे नाल।

अगर कुछ मंगना है तो उस परमात्मा तो मंगो, क्योंकि परमात्मा तुहाडी झोली दे विच जरूर वो खैरात पा देंदा है जिसे तुसी सच्चे दिलों चाहत करदे हो। विश्वास दृढ़ हो जाता है जदों असी उस परमात्मा दे कोलों मंग के अपनियां मुरादां पूरियां करनियां।

जो बात दवा से हो न सके, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिल जाए तब बात खुदा से होती है, तब बात खुदा से होती है।

बिल्कुल जी, 4 जुलाई 1999 नू करगिल युद्ध दौरान भारतीय फौज ने आर कह सकते हैं असाधारण बहादुरी अते हौसले दा प्रदर्शन करदिया होया राजनीतिक तौर ते बहुत महत्वपूर्ण टाइगर हिल ते कब्जा कर लिया।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी हो आकाशवाणी रेनबो दे जलंधर केंद्र नाल और वेला हो रहा है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 दी हाईलाइट्स से नाल जुड़न दा। कुछ ही पल बाद तुसी जुड़ोगे हाईलाइट्स से नाल।

28 जून की गल करिए, यानी कुछ ही दिनों के पहला की गल करिए, 28 जून 2026 नवी दिल्ली विच होए द पंच बॉक्सिंग दे अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल मुकाबले विच चेतना सैनी ने थाईलैंड दे मुक्केबाज खुवनीचित खुनिया नू हरा के प्रोफेशनल करियर की 8वीं जित जड़ी है अपने नाँ ते कीती। और इस शानदार जीत दे नाल ओह भारत दी नंबर वन प्रोफेशनल महिला मुक्केबाज भी बन गई। वाह जी वाह। दोस्तों ये सिर्फ एक खिडारन दी जीत नहीं सी, ये हर उस महिला दी जीत सी जो परिवार दियां जिम्मेवारियां निभाउंदियां भी अपने सुपनियां नू जीउणा रखदियां ने। बिल्कुल जी, सपने जीउंदे रहन तां फिर जिंदगी जिहड़ी है खूबसूरत हो जांदी है। अरे बात है सीड़ा है ना चेतना सैनी दे लई बंदा। चेतना सैनी सानू ये सिखाउंदी है कि मां बनना या जिम्मेवारियां आना सुपनियां दा अंत नहीं कर दिंदियां। जे इरादे मजबूत होन, मेहनत जारी रहे ते परिवार दे पार्टनर दा साथ मिले तां हर मुश्किल नू जित विच बदलिया जा सकदा है। ते फिर दसो दोस्तों, तुहाडे मन दे विच भी कोई आया एहो जिहा सुपना पूरा करन दा ख्याल? हाँ सर, दो भैणां जिहड़ियां सोचदियां ने कि असीं परिवार दियां जिम्मेवारियां विच उलझ के अपने सुपनियां नू किते गवाई बैठियां ने, ता जी उस वाली एक कदम जिहड़ा है जरूर बताओ, क्योंकि जिंदगी उहनां दी हुंदी है जो हालात अगे नहीं अपने हौसलियां दे अगे झुकदे ने। तो चलो फिर असी इस खूबसूरत सोच और प्रेरणा के नाल अगे बढ़ते हैं। अगली गलबात जिहड़ी है वह करांगे, लेकिन एक गाना तो सुनना पड़ेगा। एक गाना सुनेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। फिलहाल से दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर, और कुछ ही पहला बाद होगी खूबसूरत मुलाकात जिहड़ी देगी बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी। सो ये बनिया रहे पड़ा पाएगा आकाशवाणी दी 102.7 मेगाहर्ट्ज दे नाल, और नाल दे नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर दे स्रोत और न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए ने दिल से दिल तक।

बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, और गुड मॉर्निंग जलंधर दे सफर दे विच कौन है थोड़े नाल? थोड़ी दोस्त निशा। और निशा दे नाल तुसी खूबसूरत जिहा सफर तय कर रहे हो, और गल्लां जिहड़ियां आ हुणे असीं बढ़िया वधिया वधिया कीतियां सीगियां, हुण होर भी गल्लां जिहड़ियां बिल्कुल प्रोग्राम दे विच इसे तरह चलदियां रहणगियां और चलनगियां भी, क्योंकि जिन्नी देर तक तुसी मेरियां गल्लां नहीं सुनोगे ना तो मैं क्या फिर मतलब कि गल जिहड़ी आ उह फिर बनदी नहीं है, है ना। चलो जी गल करते हैं कि तुसी साडे बुजुर्गों के कोलों ना हमेशा कुछ ना कुछ जिहड़ा आ सुनते रहने, असीं सारे सुनते रहने। तो बुजुर्गों की एक छोटी जी आदत होंगी सी, उन्होंने पिछे छुपया होया सी एक दिल

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

FM बैंड 102.7 MHz से वेला हो रहा प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा ते आओ फिर आपा अड्डी भी थरकाइए ते टप्पा भी पाइए प्रोग्राम अड्डी टप्पा दी शुरुआत करने आ इस खूबसूरत गीत नाल।

0: देखो नी कुड़ियो किन्ना सोना मुंडा खड़ा सोने हो तो हाड़ा नाम की है
1: नाम ता मेरा जस्सी सिद्धू आ क्यों
0: ते तुसी केड़े शहर च रहने हो
1: शहर शहर ता साडा जलंधर है
0: ते तुसी चंडीगढ़ की कर दियो

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम अड्डी टप्पा। 9 बज रहे ने और वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान अते गुजरात दे दौरे ते होंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि उदो तक मुलतवी रहेगी जदों तक पाकिस्तान सरहद पारों दहशतगर्दी नूं अपनी हिमायत बंद नहीं कर देता। रक्षा खरीद कौंसल ने हथियारबंद फौजा की समर्था नूं वधाउण लई 52,000 करोड़ रुपए दिया रक्षा खरीद तजवीज़ां नूं मंजूरी दे दित्ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अते खेतीबाड़ी अते विकास किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑल नीनो कारण देश के कुछ हिस्सों विच आम तो घट बारिश के इस दे प्रभाव संबंधी स्थिति की समीक्षा की है। सरकार ने ई रिक्शा दियां बैटरियां नूं हैक करन लई वरतियां जा रहियां ऐप्स नूं गूगल प्ले स्टोर अते एप्पल ऐप स्टोर तो हटाउण दे आदेश दिते ने। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि सूबा सरकार ने मावां तियां सत्कार योजना तहत खातियां च घट पैसे पा के पंजाब दियां औरतां दे नाल धोखा कीता है। पंजाब कांग्रेस दे कई नेतावां वल्लों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिलके कांग्रेस हाईकमान वल्लों चोणां दियां बनाई पंजाब कमेटी लिस्ट बारे कमेटी नूं मुड़ विचार करन लई किया गया है। कपूरथला विच स्कूलां दे आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स दी विक्री ते मुकम्मल पाबंदी लाउण ते हुकम जारी कीता गया है। पंजाब विच अनअधिकारित कलोनियां विच रहिंदे हजारां वसनीकां नूं वड्डी राहत देण दे उद्देश नाल अहम फैसला लैंदियां पंजाब मंत्री मंडल ने सूबे भर दियां अनअधिकृत कलोनियां नूं नियमित करन संबंधी सोध नूं प्रवानगी दे दित्ती है। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि सूबे विच बिजली की स्थिति पूरी तरह आम वांग है। अते चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने 6 तो 6 जुलाई तक पंजाब अते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। ते एसी हुन तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: वैसे ता दिल गांदा फिरदा। वाह जी वाह, बिल्कुल जी, प्लेलिस्ट जेडी है ना वो पुरानी खोली जांदी है फिर, है ना। और कहंदे ने कि मीह पैंदे ही ना हर बंदे दा एक अलग रूप निकल आंदा है, कोई खिड़की खोल के बह के चाह दी चुस्कियां लैंदा है, ते कोई पकौड़ियां दी फरमाइश कर दिंदा है, ते कोई बहादुर हुंदा है जिहड़ा छतरी लै के भी पूरा भिज के घरे आ जांदा है। ते बचपन दा मीह तां वखरा ही सी ना, ना मोबाइल दी फिकर, ना कपड़े होण दा डर, बस कागज दीआं कश्तियां छप्पड़ां दे विच छाणा, ते घर आ के मम्मी तों थोड़ी जिही कुट भजणी ओह वखरी। चलो मौसम तो जिहड़ा आ बदलता ही रहता है, ये तो पुरानियां यादां दी प्लेलिस्ट भी चला दिंदा है, हर बूंद किसी ना किसी की कहानी नाल जुड़ी हुंदी है। ते फिर तुहाडियां जिहड़ियां मेरे कोल मैसेजेस है आने शुरू हो चुके ने प्रोग्राम दे विच, ते तुहाडे कल्ले हुए मैसेजेस, तुहाडियां कल्लियां होईयां जिहड़ियां गल्लां ने ना, ओ मैं हुण बिल्कुल तरोताज़ा करनियां ने प्रोग्राम दे विच। ते फिर वेखदे आं जी, सब तो पहला ऑडियो मैसेज जिहड़ा एक आया उहनूं सुणदे आं की कहिंदे ने।
1: निशा बेटा जी
0: जी

0: तो मतलब मतलब नहीं नहीं मेरा मतलब है मेरे बड़े भाई तेरे बिगड़े काम बना रहे
1: हैं
0: बड़ी मेहरबानी तेन सुन गावे उठावा

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है दिल अपना पंजाबी। और इस सिलसिले दे विच असीं गल कर रहे हैं कि आज बरसात दे मौसम दे नाल जुड़ियां होईयां यादां दी।

0: एक नंद ही अपनी माँ को समझा सकती है तो उस घर की बहू कभी दुखी नहीं हो सकती और ना ही कभी कोई घर बिगाड़ेगा। सोनू मलेरकोटला तो मैसेज कर रहे ने, एक गरीब किसान का बेटा मिट्टी में खेलता हुआ बड़ा हुआ। लोग कहते हैं जिंदगी पर मिट्टी बिछी रहेगा, लेकिन उसी मिट्टी ने उसने अपने सपने दी इमारत बना लेती। और एक दिन वही लोग उसकी सफलता नू देख के सिर चुकान लगे। सिख की मिलती है इस चीज तो, हालात छोटे ही हो सकते ने, लेकिन अपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। लेकिन सारे सपने जड़े है वो कदे भी छोटे नहीं होने चाहिए। गुड मॉर्निंग निशा मैडम जी, गुड मॉर्निंग सूरज चौहान मैसेज करे ने, तहसील देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश। अर्ज किया है इशाद ना इश्क की परवाह करें ना हुस्न की परवाह करें, ना इश्क की परवाह करें ना ही हुस्न की परवाह करें, ना इश्क की परवाह करें ना हुस्न की परवाह करें, यात्रियों अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करें। अच्छा ये मैसेज यात्रियों वास्ते सीगा, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज चौहान जी, सब दे चेहरे देते मुस्कुराहट लेके आंदे लई। नमस्कार जी, यशपाल जम्मू कश्मीर जिला जम्मू खड़ा बिल्ली पिंड सीयूनी तो मैसेज आया है जी। और स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि ते उन्हां नूं सादर नमन करते हुए, रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशी की फरियाद करते हैं, ये प्रभु उनकी जिंदगी खुशियों से भर देना जो मुझे याद करने के लिए अपना पल बर्बाद करते हैं। सत श्री अकाल जी, अज बरसात का जिक्र होया है तो असीं भी गल करांगे। बरसात का जिक्र होया तो कहिंदे ने कि इस नाल संबंधित एक कविता कणियां आईया तन जिहड़ा है साडे कोल भेजिया ने मनजीत सिंह बंदर पिंड बद्दोवाला लुधियाणा तो। इन्होंने जी लिखा जी कणियां आईया निकियां निकियां कणियां आईया और बिरखा बूटियां ते रौनकां छाईयां, बिरखा बूटियां ते रौनकां छाईयां निकियां निकियां कणियां आईया। सोनू मिंटा बिल्ला होए इकट्ठे सारे, कणियां विच भिज भिज लैण नज़ारे, कुड़ियां दे रल किकलियां पाईयां निकियां निकियां कणियां आईया। कमो प्रीति सुखी नू भी सद लियाईया सारिया ने एक एक कश्ती बनाईया रंग बिरंगी लीका नाल सजाईया निकिया निकिया कणियां आईया। जिवें जिवें कणियां तेज मीह हो जाना गलियां दे विच पानी पानी हो जाना, वेखियो जद किश्तियां दौड़ा लईया निकियां निकियां कणियां आईया। बिजली लिशके बदल गरजन लगे, मापे सब तो चुड़कन वर्जन लगे, आवाज लगाउण चाचियां ताईयां निकियां निकियां कणियां आईया। कहिंदे किसान नू सौखा सा हो जाना फसलां ने हुण वादे दे राह हो जाना, घा चारे नल रजन मझां गाईयां निकियां निकियां कणियां आईयां। हौली हौली इधर बदल आउण लगे, ठंडी ठंडी हवा दे बुल्ले लियाउण लगे, बोलो बदलो क्यों देरियां लगाईयां निकियां निकियां कणियां आईयां। अपनी मावां दी कोई गल ना सुने आखी जांदे ने सारे आ जांदे आ हुणे, मोरा ने भी तां बार ही पहला पाईयां निकियां निकियां कणियां आईयां। अंदरों आवे सारे हुण बेबे जी बुलाउण, किते ढिले ना हो जाइयो ये समझाउण, ता सुनोगे जे कांते दो दो लगाईयां, जे ना सुनोगे ता कांते दो दो लगाईयां निकियां निकियां कणियां आईयां। बहुत बहुत शुक्रिया जी बरसात दे ते खूबसूरत कविता लिखन दे लई। दिल से दिल तक 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा सारे दा अपना पसंदीदा प्रोग्राम। ओके सो अगला मैसेज जिहड़ा आया सी प्रोग्राम च कर लैने आं शामिल जी। लो जी,
1: देखदे दिलां नू ते सुनदे कन्नां नू, निवाना जिहा श्रोता राम राम सत श्री अकाल ते अदाब आखदा है, स्वीकार करिया जे अज रेडियो रेनबो दा मोर्चा संभालन वास्ते निशा धीराणी बैठे हुए ने स्टूडियो दे अंदर ते हसदा मुस्कुराउंदा ते गुदगुदाउंदा शनिवार लै के आ गया जे उदय चंद्र। एक बंदा बुढ़ा ते उत्तों शरीर कमजोर जंगल विचों लंघदा पिया सी, एक शेर ने फड़ लिया ते बोलिया, बड़े चिरां बाद इंसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान ते गुजरात च कई विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान स्थित पाबंदी शुदा दहशतगर्द संगठन जैश ए मुहम्मद नाल जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र ने कल अल नीनो कारण देश के कुछ हिस्सों में आम नालों घट बारिश की स्थिति और इस प्रभाव बारे जायजा लिया। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन और फ्रांस के खजाना मंत्री रोलेंड लेस्कूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और माली संवाद की सह प्रधानगी की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,166 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सरकार ने ई रिक्शा दी बैटरियां हैक करने लिए वरतिया जा रही एप्स नू गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर तो हटाने के आदेश दिए ने। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावां तियां सतिकार योजना तहत खातियां च घट पैसे पा के पंजाब दियां औरतां नाल धोखा किया है। पंजाब कांग्रेस के कई नेतावां वल्लों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिलके कांग्रेस हाईकमान वल्लों चोणां संबंधी बनाई पंजाब कमेटी की लिस्ट बारे कमेटी नूं मुड़ विचार करन लई कहा। कपूरथला विच स्कूलां दे आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स की विक्री ते मुकम्मल पाबंदी लगाउण दे हुकम जारी किए गए ने। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने 6 तो 9 जुलाई तक पंजाब अते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच अज मैनचेस्टर विच खेडिया जाएगा। SNFM न्यूज हेडलाइंस आहुन सुनदिया प्रोग्राम गीत बहार सुनदे रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है गीत बहार। यस, गीत बहार प्रोग्राम जिहदे विच बहुत सारे पुराने 90s 20s दे गाने जिहड़े ने तुसी सुनदे हो। एंड अज सैटरडे वाइब्स जिंदा होया, वीकेंड वाइब्स जिंदा होया, ए गाना जो है सुन लो प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच। आरजे गरिमा है थोड़े नाल, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

पिछली गल है कि बहुत मतलब कॉलेज डेज वाली लव स्टोरी सी इस करके यू नो इट वॉज अ सुपर हिट मूवी. एनी वेज फिलहाल ना जो मौसम है काफ़ी सरप्राइजेज दे रहा है. आई मीन सरप्राइजेज इन द सेंस देखो ना कल अचंगी भली धुप निकली हुई सी मतलब वधिया वाली धुप कहिंदे ना एकदम गर्मी वाली धुप ते अचानक धुप दे विचों विच मुसलाधार बारिश आ गई. आई मीन एदा जो पहाड़ा ते हुंदे उदा हो गया कल यू नो जिद्दां ही मैं घर गई सी एंड आफ्टर दैट इन्हें दोपहर के टाइम होया सीगा कुछ ही मिनटों के लिए बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज नेचर ने सानू दिता. एंड एनी वेज हाले आने वाले दिनों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया. सो जस्ट वांट टू से कि अपना रखो बहुत सारा ध्यान गर्मी तो भी बारिश तो भी एंड इंजॉय करो अपनी जिंदगी के हर एक पल नू हर एक मूवमेंट नू जिवें कि प्रोग्राम गीत भारत में आप हर एक गाने नू इंजॉय करना है उदा ही जिंदगी के हर एक मूवमेंट में तुम इंजॉय करो. फिलहाल अगला गाना जो है अलीशा चनोई की आवाज में सुनना है तुम सुनते रहो प्रोग्राम गीत बहार विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन एफएम रेनबो.

0: caro, caro,
1: जी बिल्कुल, दिल को रोकते हैं, दिल को टोकते हैं, पर दिल सुनता है क्या किसी की? ना जी ना, दिल ने ऐसा सीखा ही नहीं कि वो हमारी सुने। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार विद मी आरजे गरिमा। कितना खूबसूरत गाना सी है लीशा चन्नौई दी आवाज़ दे विच, एंड हर सिंगर दी अपनी एक आवाज़, अपनी एक वाइब होंदी है, तो अपना एक जॉनर होंदा है गाने गाने का, गाने गाने का। एंड जिवें कि सुनिधि चौहान, शी इज़ वर्सटाइल, बट अलीशा चन्नौई इज़ ऑलसो वर्सटाइल, पर इस तरीके के जो गाने होंगे ना अलीशा चन्नौई की आवाज़ के बहुत फबदे है। एंड फिलहाल जी गाने अगे भी है बिकॉज प्रोग्राम का नाम गीत बहार है, आरजे गरिमा के नाल ऑन रियॉन एफ एम रेनबो।

हैपनिंग गाना है ना, कितना ही ज्यादा हैपनिंग। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार आरजे गरिमा दे नाल। लाइक कुछ कुछ होता था ए गाना जो है ना, अमन जो करैक्टर है इस फिल्म दे विच जो सलमान खान ने निभाया है, उस करैक्टर दे नाल प्यार हो जाता है कि कितना अनकंडीशनल लव जो है अमन करता है अंजलि नू। सो ऑफकोर्स जो तो जिदा जिदा वड्डे हुए उदो पता लगा कि भी कुछ कुछ होता है दे विच राहुल जो करैक्टर सी, इट वॉज अ बिग रेड फ्लैग, सबनों पता लग गया।

तो कितना कितना ही एक्यूरेट बोला गया है ना इस गाने में, मोहब्बत तो हो जाती है, शरारत भी हो जाती है। फिलहाल प्रोग्राम गीत बहार भी आ जाता है रोज सुबह 10 से 11 बजे, और आज तो आपकी आरजे गरिमा भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ थी और आज भी इस प्रोग्राम में। वेल जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते गीत बहार प्रोग्राम दे विच तुसी गाना इंजॉय कीता, एंड ऑब्वियसली हीरो नंबर वन फिल्म तो एक गाना सीगा 1997 दी बॉलीवुड फिल्म हीरो नंबर वन जिदे विच सी करिश्मा कपूर एंड गोविंदा उदित नारायण एंड साधना सरगम दी आवाज़ दे विच गाना सी। बहुत ही रोमांटिक है जो गाना है, बहुत ही रोमांटिक इस करके भी हो गया बिकॉज दे विजुअल्स जो ने वो बहुत अमेजिंग सी, आउटडोर शूटिंग सी, यूरोप दे विच शूट किए गए, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज, बहुत ही स्नोई माउंट टेन्स जिन्हें स्विट्जरलैंड के भी इस गाने में दिखाए गए, एंड अपने है गाना जो है अपने आप विच इन्ना सुनने में ही चार्मिंग लगता है, तो इन्नी ब्यूटीफुल लोकेशन से शूट होया तो होर भी ज़्यादा सुपर चार्मिंग हो गया है गाना। एनीवेज फिलहाल अगले गाने वाला पर रुख करिए, आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार विद मी आर जे गरिमा, स्टे ट्यून्ड।

तो यार इमान साहब का गाना हो चाहे बॉलीवुड फिल्म की धुन उठा के तमिल च पा देन उन्हां दी मर्जी विद बिकॉज उन्हां दे गाने दी कंपोजिशन जिहड़ी है वो हुंदी यानी अमेजिंग है बाकी फिल्म्स एंड सॉन्ग्स ऑफ दैट इरा इज ऑलवेज एवरग्रीन एंड अमेजिंग. फिलहाल अगला गाना तुसीं इंजॉय करो. बहुत ही चुपके से हम इस गाने को सुनेंगे बिकॉज गाने दे लिरिक्स नहीं चुपके से सुन इस पल की धुन. सो उदित नारायण जी एंड अलका जी दी आवाज़ विच एक होर गाना आपां सुन लईए इन प्रोग्राम गीत बहार. तुहाड़े नाल बनी हुई है तुहाड़ी अपनी आरजे गरिमा ऑन दी ऑन एफ एम रेनबो.

हाँ, इस पल की धुन को हमने एक्चुअली में बहुत ही चुपके से सुना इन प्रोग्राम गीत बहार आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम ऑफ कोर्स गीत बहार दे विच गाना तुसी एंजॉय कीता फ्रॉम फिल्म मिशन कश्मीर तुहाडे नाल थोड़ी अपनी आरजे गरिमा सो दिस सॉन्ग उदित नारायण जी दी आवाज दे विच एंड अलका याग्निक जी दी आवाज दे विच गाना जो है ना सानू डायरेक्ट मतलब मैनू तो एक्चुअली डायरेक्ट लैके जाता है कश्मीर श्रीनगर दे डल लेक ते हाँ शिकारे दे विच इदां इट फील्स लाइक शिकारे ते बैठे हुए हाँ एंड हल्की हल्की जी ए यू नो झील दी जिहड़ी फीलिंग है ना डल लेक दी ओह इस गाने दे विच बाखूबी झलकदी है सो एनीवेज फिलहाल हर एक दी मूवमेंट्स हुंदे ने कुछ यादां हुंदियां ने कि कोई गाने सानू इदां दे हुंदे ने कि सानू एक पर्टिकुलर मूवमेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर प्लेस ते लै जांदे ने So this song is just love. All right, G. Moving on to the next track of the show. In program, Geet Bahar, agla gana tasi enjoy karoge. Because mujhe to tumse kuch kehna hai gaane the lyrics ne. And Geet Bahar program to which RJ Garima de naal bane ro. Because ye gaana bahut kuch kahega. Thoda sa dance bhi karwayega. So enjoy.

ले गाना भी खत्म हो गया और किसी ने किसी को कुछ कहा भी नहीं, बस डांस कर लिया। आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे गीत बहार विद मी आरजे गरिमा। 2000 ईयर दी एक फिल्म यू नो हद कर दी आपने, उदा सुपर हिट गाना तो सी फिलहाल एंजॉय किया है। हद कर दी आपने दे विच सी गोविंदा एंड रानी मुखर्जी। सो ऑन दौर सीगा जो गोविंदा ते रानी मुखर्जी दी जिहड़ी है मूवी जो आई सी उदों काफ़ी ज़्यादा रूमर सीगियां, कॉन्ट्रोवर्सीज सीगियां, एक्चुअली ज़्यादा रूमर सीगियां कि गोविंदा एंड रानी मुखर्जी दे विच कुछ कुछ चल रहा है। सो यह गल जी है गोविंदा की वाइफ सुनीता नू बहुत बहुत ज़्यादा खटकती सी, इस करके सुनीता सुनने में आया है कि उदों अपने बच्चों नू लैके अपने मतलब दूसरे घर कितने शिफ्ट हो गई सी, अपने पेके चले गए से शिफ्ट हो गई सी, बट बाद विच दोनों विच गोविंदा एंड सुनीता विच पैचअप हो गया, बिकॉज शायद सुनीता नू सिर्फ गलत फहमी सी कि गोविंदा ते रानी मुखर्जी विच कुछ कुछ चल रहा है। फिलहाल सुनीता नू आपां देख सकते हैं लॉकअप सीजन दा, लॉकअप जिहड़ा रियलिटी शो है उहदा जिहड़ा सीजन है उहदे विच सुनीता नू आपां देख सकते हैं गोविंदा दी वाइफ नू। फिलहाल जी आपां सुनांगे तुहाडे अपने प्रोग्राम गीत बहार दे विच अगला गाना on the on 102.7 megahertz akashwani fm rainbow। dil ta karda hai ki geet bahar program khatam hi na hove par kadidiyan suiyan keh rahiyan ne kuch 7-8 minute reh gaye ne, us to baad aapa program पंजाबी तड़का की भी शुरुआत करनी है, इस करके कुछ एक दो गाने होर इंजॉय कर लिए इन दिस प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो।

102.7 MHz आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच फोन भी वजना शुरू हो चुका है तुसी भी कॉल लगाओ ते कॉल लगा के प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकते हो जिवें कि नेक्स्ट कॉलर नाल आपां बहुत ही जल्दी गलबात करन जा रहे हैं स्टे ट्यून्ड टू एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा पंजाबी तड़का। हेलो
1: हेलो मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
0: कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी सन्नी भगत बोल रहे हैं, भारत कैंपस जलंधर तो जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल सन्नी जी?
1: बहुत वधिया मैडम जी, 3 महीने बाद तुहाडे नाल गल हो रही।
0: अच्छा जी, मेनू तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले ही गल हुई सी शायद।
1: नहीं मैडम जी, 3 महीने बाद तुहाडे नाल गल हो रही
0: है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत वधिया। पुरानी कहावत सी, पता नहीं एदा हुंदा कि नहीं हुंदा, पर मेरी दादी जी कहंदे हुंदे सीगे,
1: काणा मीं पै रिहा।
0: हां हां, नहीं कहंदे सीगे जो धुप विच मीं आंदा सी ना, ते मेरी दादी जी कह रही सी किसे किते जगह हीरन ते हिरनी दा व्याह हो रिहा है, इस करके धुप दे विच बारिश आ रही है।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी,
0: मतलब आई डोंट नो, एक कहावत बुजुर्गों तो ही आई है, पर कहानी बनाई है या जो भी है, पर मेरी दादी जी कहती हुंदी सी, ते कल एदा ही होया सी, धुप विच बारिश आ गई, मैं कहा ओहो किते हिरन ते हिरनी दा व्याह हो रहा है, सारे हसन लग गए। फिर
1: गर्मी
0: हो वे, सर्दी हो वे, बारिश हो वे, प्रोग्राम इंजॉय करने ही करने आकाशवाणी। सो गाना कहना सुनना है तुसी सन्नी जी?
1: गाना मैं गुरदास मान जी दा सुना दियो, मामला गड़बड़ फिल्म दो, कोई भी सुना दे।
0: ठीक है सनी जी, थैंक यू सो मच कॉल करने लिए।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: ऑलराइट जी, प्रोग्राम तुहाडा अपना पंजाबी तड़का, इहदे विच अगला गाना तुसी इंजॉय करोगे, ते तुसी प्रोग्राम दे विच कॉल लगा सकते हो 2342174, ते अज 11:30 बजे तुसी साडी दिल्ली केंद्र तो प्रोग्राम भी सुनोगे स्टम्प्ड। सो इस करके ठीक 11:30 बजे तक पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच जिन्ने फरमाइशी गीत तुसी प्ले करवाने हैं करवा लो। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो एंड एंजॉय दिस गाना।

0: मामला धड़पड़ है, मामला धड़पड़ है।
1: 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहे हैं और अपना पंजाबी तड़का। हेलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
2: मैडम राजकुमार शर्मा लुधियाने तो बोल रहे हैं।
1: हो राजकुमार जी, की हाल ने लुधियाने वालियां दे, लुधियाने दे?
2: मैडम थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है, बदलबाजी हुई है
1: लुधियाने भी। वाह जी वाह।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है। और सुनाओ राजकुमार जी, केड़ा गाना सुनोगे?
2: गाणा जी हरभजन मान दा गल्ला गोरियां दे विच टोए,
1: असी मार गए नी होए होए
2: होए होए।
1: ठीक है जी, ओए होए गाने तो
2: प्रोग्राम बहुत बढ़िया पेश कर रहे हैं।
1: हां
2: ते बहुत एंजॉय हो रहा वा, ते परमात्मा थाने चढ़दी कला चढ़ के।
1: थैंक यू सो मच, थाने भी चढ़दी कला ते गाना, शुक्रिया। ऑलराइट, सो राजकुमार जी दा फेवरेट गाना एंजॉय करो ते तुसी प्रोग्राम पंजाबी तड़का विच कॉल लगा सकदे हो। 2342 174 and gaana aa reha, stay tuned to FM Rainbow, RJ Garima tode naal।

0: 102.7 MHz आकाशवाणी एफएम रेनबोती प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी तड़का। हेलो
1: जिस यार दे यार हजार होमन ओनू अपना यार ना समझी जेड़ा हद तो ज्यादा प्यार करे ओदे प्यार नू प्यार ना समझी जेड़ा होवे यार ते देवी हार ओदी हार नू हार ना समझी तेरा जितना यार गरीब होवे ओदी संगत बेकार ना समझी। मैडम जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुन वाले श्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: ऑलराइट, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल तुहाडा?
1: ठीक ठाक जी। मैडम जी तुसी सुनाओ, बहुत वधिया प्रोग्राम कर रहे हो तुसी।
0: शुक्रिया जी, तुसी बहुत वधिया वधिया कॉल्स लगा रहे हो, वधिया वधिया गाने प्ले करवा रहे हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा भी।
0: बिलकुल जी, तुहाडा भी धन्यवाद। सो केड़ा गाना सुनोगे
1: मैडम जी? यमला जट दा कोई भी गीत सुना दे।

102.7 MHz ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान ते गुजरात च कई विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान स्थित पाबंदी शुदा दहशतगर्द संगठन जैश ए मुहम्मद नाल जुड़े 8 लोकां नूं गिरफ्तार कीता है। केंद्र ने कल अल नीनो कारण देश दे कुछ हिस्सों विच आम नालों घट बारिश दी स्थिति अते इस दे प्रभाव बारे जायजा लिया। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के खजाना मंत्री रोलेंड लेस्कूर ने कल फ्रांस विच भारत फ्रांस आर्थिक अते माली संवाद की सह प्रधानगी की। जम्मू कश्मीर विच अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,166 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सरकार ने ई रिक्शा दी बैटरियां नूं हैक करन दी वरतियां जा रही एप्स नूं गूगल प्ले स्टोर अते एप्पल एप स्टोर तो हटाउण दे आदेश दित्ते ने। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि सूबा सरकार ने मावां धीआं सत्कार योजना तहत खातियां च घट पैसे पा के पंजाब दीआं औरतां दे नाल धोखा कीता है। पंजाब कांग्रेस दे कई नेतावां वल्लों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिल के कांग्रेस हाई कमान वालों चोणां संबंधी बनाई पंजाब कमेटी की लिस्ट बारे कमेटी नूं मुड़ विचार करन दे लई कहा गया।

हेलो जी, हेलो। प्रोग्राम होम सिट होम हो चुका है जी। शुरू तो हाड़ी अपनी आरजे गरिमा दे नाल, ऑफ कोर्स तो हाड़ी अपनी 102.7

0: मोरनी बनके
1: हाँ, बस नेहा कक्कर का हासा सुन लो गाने के एंड दे विच मतलब पता लग जाता है कि नेहा कक्कर ने अपना ठप्पा लगा दिता होया एक बार नहीं 10 बार ये तो गाना मेरा ही है ऑफ कोर्स बहुत सारे प्यारे गाने दिते नहीं नेहा कक्कर ने सारे वेडिंग सॉन्ग्स जिद्ते आप अज भी थिरकते हैं डांस करते हैं सो एनीवे

आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। यू नो व्हाट मी पे ता चा पकौड़ियां दा दिल जिहड़ा है ना वह हर एक नूं तरसदा है, पर उत्थे ही पेट कहिंदा है भई मेरा भी सोच लिया थोड़ा जिहा, हुणे तां रोटी खाधी है, हुण शाबी मी आ गया है जेकर तो पकौड़े खाना जरूरी है। सो एनीवेज बरसात के दिनों में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो नमी करके बैक्टीरिया ते फंगस बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सो ये जिन्ना हो सके बिल्कुल फ्रैश ते गर्म गर्म खाना ही खाओ। फ्रिज विच पिया बासी खाना उन्हूं बार बार गर्म करके खाण तो बचो। तो जे सैलड या फ्रूट्स हैगे ने तो पहला उन्होंने चंगे तरीके वॉश करना बहुत जरूरी है। तो यू नो बार कट्टे हुए जिहड़े फल ने या खुला जिहड़ा स्ट्रीट फूड है इन्हां नूं मौसम च थोड़ी छुट्टी दे दिओ, बिल्कुल छुट्टी दे दिओ, एक्चुअली थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। सो पानी भी साफ ते फिल्टर कीता होया पीओ, एंड जे बाहर जा रहे हो तो अपनी पानी की बॉटल जरूर नाल लैके जाओ। सो इस मौसम दे विच दाल खिचड़ी सूप ते हल्का फुल्का घरेलू जिहड़ा खाना है ना तुहाडी बॉडी का सब तो वधिया दोस्त जिहड़ा बन सकता है, बिकॉज एक तो वैसे ही इन्नी ज़्यादा गर्मी है इन्नी मॉइस्चर दे विच किचन दे विच बहुत हैवी हैवी जिहड़ा फूड है ना गर्मियां दे विच वो बनाना भी मुश्किल हुंदा ते उहनू डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हुंदा है, मतलब काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं डाइजेस्ट हुंदे साडी जिहड़ी बॉडी है गर्म हो जाती है जो फूड इन्ना हैवी फूड डाइजेस्ट हो रहा होंगे। तो सो यस ऑफकोर्स दुध दही या जो ब्रैड है इन्हों चीज़ों यूज़ करने तो पहला एक बारी जो यदि एक्सपायरी डेट है जरूर देख लिया करो। दो सैकेंड की यह जी आदत है ना यह कई दिनों की परेशानी तो सू बचा सकती है। सो जो मीह पै रहे हो मज़ा भी लो बारिश का, इंजॉय एट, तुम गेड़ी तो जाओ कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं है, पर अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखो बिकॉज घर उदों ही होम स्वीट होम बनता है जो सारे के सारे तंदुरुस्त हो एंड बारिश में भी इंजॉय कर रहे हो। ओके सो आने वाले दिनों जी बारिशा हो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड फिलहाल बारिश की गल हुई है तो फिर बारिश का गाना सुन लें। आकाशवाणी एफ एम रेनबो से बने रहो आरजे गरिमा के नाल, मैं थोड़ी जी ठंडक पेगी इस गाने नूं सुन के इन गर्मी च। स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो, प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम।

What a lovely voice of Arijit Singh, यार. मतलब गाने दे विच इंसान डूबो जाता है, दिल करता है डूबे ही रहिए, है ना. आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी, तुहाडा अपना होम स्वीट होम, तुहाडी अपनी आरजे गरिमा दे नाल. सो लेडीज एंड ओनली लेडीज, जे सवेरे उठदे ही लगे कि हले तो उठी सी, हले तो उठी हाँ, जस्ट हले तो उठी हाँ, फिर भी इन्नी ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है, तो हो सकता है कि सिर्फ काम का नहीं हॉर्मोन्स का भी मामला होवे. काम करना तो औखा है इस गर्मी के मौसम में, फिर भी आप करते रहने, अपने आप को खिंच के हर कोई करता है, नॉट इवन लेडीज, मैन भी करते रहे, है ना. पर कई बार की होंगे लेडी के जो हॉर्मोन्स होंगे ने भी काफ़ी गड़बड़ी कर देते हैं. सो कई जो वुमेन है हॉर्मोनल इंबैलेंस करके सारा दिन उन्होंने लगता है आप थके थके जहाँ थकिया थकिया रहा ने, बार बार उन्होंने नींद आती है, तो कई बार तो बिना कारण चिड़चिड़ापन भी हो जाता है. सो इदा इस सिचुएशन के सब तो पहला अपनी डाइट वाल ध्यान दो. ऑफकोर्स मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है, नेचर वॉक बहुत जरूरी है, पर जो डाइट साड़ी गड़बड़ होएगी तो हॉर्मोन्स होर सानू तंग करेंगे. हाँ जी. सो हर रोज़ ना सब तो पहला तो सवेरे प्रोटीन युक्त नाश्ता करो. ऐ नहीं कि तुसी लून जवैन वाली परौंठी खाई, ठीक है, तो बस खा के नाल चाह पीती हो गया तेरा नाश्ता, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ऐदा नहीं चलना. सारे का ध्यान रखो दो, तो अपना भी ध्यान रखो, सारे के लिए प्रोटीन युक्त नाश्ता बनाओ. ओके, आप तो जरूर से जिमें कि मूंग की दाल का चिल्ला हो गया, पनीर हो गया, दही हो गई, या अंडे जे तुसी अंडे खा लेंदे हो तो. एंड जो बॉडी नू सही पोषण मिलता है ना, उदो एनर्जी भी बनती है, एंड पूरा दिन जो बॉडी है थकी थकी नहीं रहती, एंड हॉर्मोन्स जो है ताड़े सही रहन, उदली प्रोटीन वैसे ही बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा है. आयुर्वेद दे विच शतावरी जो है ना उन्हें वुमेन दे लई बहुत ज़्यादा लाभदायक मनिया जाता है, पर इनू अपनी हेल्थ के मुताबिक किसी बहुत ही वधिया आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह दे नाल तुसी शुरू कर सकते हो. आप अपना डॉक्टर ना बनो, पर जरूर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को एडवाइस ले सकते हो कि यह थोड़ी सिचुएशन है, इस तरीके थोड़े हॉर्मोन्स ने, सो कि तुसी शतावरी लै सकते हो नहीं लै सकते हो. वो थोड़ी देखेगा, थोड़े सिम्पटम्स नू देखेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर, ऑलसो देखेगा कि थोड़ी प्रेगनेंसी तो नहीं है, एंड अपने अकॉर्डिंगली तुहानू शतावरी किन्नी मात्रा च लैनी है, किस तरीके नाल लैनी है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर दसेगा. बट शतावरी इज सच एन अमेजिंग हर्ब जो कि बहुत एक वड्डा राम

डीजे वाले गाने, आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे जी तुम्हारा अपना होम स्वीट होम विद मी आरजे गरिमा। सो जी गल कर रही थी मैं यू नो वुमेन दी जो हॉर्मोनल हेल्थ है उसके बारे आप गल की, शतावरी के बारे आप गल की, सारी डाइट के बारे, दालचीनी वाले पानी जो सिनेमन वाटर है उसके बारे कि किस तरीके एकदम माइंड फ्रैश रखेगा एंड बॉडी विच

एंड सारी भी कह रही है कि मतलब मैं भी हूं मॉडर्न हो गई हूँ जी. सो ब्लाउजेस की गल करिए तो आजकल बैकलेस, डीप नेक, बोटाई, हॉल्टर नेक ते स्लीवलेस डिजाइन काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं. अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली तुसी कोई भी ब्लाउज सिलवा सकते हो. एंड जेकर तुसी तुहानू लगता कि काफ़ी फ्लफी हो, देखो ओवरवेट कहना चंगा नहीं लगता, काफ़ी फ्लफी हो ते तुसी स्वीट नेक भी स्वीट नेक ब्लाउज भी बनवा सकते हो. उहदे नाल थोड़ी पतली लुक आती है कि मतलब जिवें आपां थोड़े स्लिम आ, मतलब 5 किलो वेट अपने आप घट जाता है स्वीट नेक ब्लाउज आपां जे सिलवाईए तां. एंड स्पैशली नाल जॉर्जर की साड़ी वेयर करिए तो वैसे ही 5-6 किलो इंसान तक घटा देती है जॉर्जर की साड़ी. पर चलो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस करके कॉटन की रेडी टू वेयर साड़ी ज़्यादा जो लेडीज ने वो लेना पसंद कर रही ने. सो डिपेंड करता है जो तुसी तुहानू साड़ी पाना पसंद है तो एकदम सीती सताई जो साड़ी है ऑनलाइन बहुत ही ईजीली अजकल मिल जाती ने. ओके सो एनीवेज इस तो इलावा स्ट्रेट कट सूट्स जो ने बहुत ज़्यादा इन है ने. कॉर्ड सैट्स ना सुपर इन है ने, मतलब कोई झंझट नहीं, फटाफट कॉर्ड सैट्स पा के आप कितने भी काम से जाना है आप जा सकते हैं. एंड यू नो जे आप शेड्स की गल करिए पेस्टल शेड्स, फ्लोरल प्रिंट्स, चिकनकारी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं अजकल. चिकनकारी कुर्ते, चिकनकारी सूट्स, फ्लोरल प्रिंट सूट्स. एंड जे गल करिए आप मेकअप की तो बहुत ही घट मेकअप, मिनिमल मेकअप का फैशन है अजकल. मीनस जे आप लिपस्टिक जो है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का मेकअप है एकदम न्यूड मेकअप है जो है ना वही ट्रेंड करता पाया. स्पैशली न्यूड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ने. जे तुहानू लगता है तुहाडी कंप्लेक्शन ते जो न्यूड लिपस्टिक है बहुत ज्यादा डल लगेगी तो फिर बिल्कुल सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक तुसी लगा सकते हो, बिकॉज सॉफ्ट पिंक जो लिपस्टिक्स है या सॉफ्ट पिंक मेकअप दा भी अजकल बहुत ज्यादा फैशन है. ईदर न्यूड और सॉफ्ट मेकअप, सॉफ्ट पिंक मेकअप. सो दिस इज एक्चुअली द मेकअप ट्रेंड गोइंग ऑन. एंड ऑफकोर्स थोड़े जे हैवी दुपट्टा स्टेटमेंट इयररिंग्स ने ना वो भी थोड़ी किसी भी लुक न बहुत ज्यादा उजागर कर सकते हैं. ओके सो अजकल का फैशन कहता है लैस इज मोर, पर एक गल याद जरूर रखो हर ट्रेंड जो है ना हर किसी के लिए नहीं होता है. कपड़ा ओ पाओ, ज्वेलरी ओ पाओ, मेकअप ओ कैरी करो जो थोड़ी परसनैलिटी ते कंफर्ट दे मौके ते हिसाब दे नाल होवे, बिकॉज असली जरा स्टाइल है ना वो ब्रांड या ट्रेंड नहीं होता है, मुस्कुराहट ते कॉन्फिडेंस दे नाल जरा है ना असली ट्रेंड बनता है. ठीक है सो जी ट्रेंड्स नू फॉलो करो पर अपनी पहचान बिल्कुल नहीं भूलनी. ऑलराइट फिलहाल अगला गाना जो है वो आप इंजॉय कर दिया आतिफ असलम एंड अलका दी आवाज दे विच बाखुदा तुम ही हो. आकाशवाणी एफएम रेनबो ते होम स्वीट होम प्रोग्राम चल रहा है विद मी आरजे गरिमा.

हाँ जी, तुम ही हो अपने घर की सेलिब्रिटी, तुम ही हो, क्योंकि तुहाडे बगैर तो सरदा ही नहीं घर दे। वो गल वक्री है, लोग मानते नहीं पर सानू तो पता ही है ना। आकाशवाणी एफ एम रेनबो के प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम विद मी आर जे गरिमा। सो जिवे कि हमेशा ही गल आप करते हैं कि वूमेन नू फाइनैशली डिपेंडेंट होना चाहिए है, एंड इन केस जे वूमेन फाइनैशली इनडिपेंडेंट होना चाहिए है, तो जे कोई इनडिपेंडेंट होना चाहती है फाइनैशली वूमेन, तो वो अपने हुनर का प्रयोग करके हो सकती है या फिर कोई ना कोई स्किल जो है एक्वायर कर सकती है, ताकि वो अपनी फाइनैंस के मामले में किसी के उत्ते भी डिपेंडेंट ना हो। सो जी अज आप गल करांगे नेल आर्टिस्ट की। यस, नेल आर्टिस्ट ए टाइम वो है जो तो सारे यही पूछते हैं कि नेल्स से मतलब बहुत सोहना जहा डिजाइन पवाया है, कितों पवाया है। यह वो टाइम है कि मतलब सिर्फ नेल पेंट लगा के काम नहीं चलता। अजकल वुमेन आर लाइक कि मतलब उन्होंने जो नेल्स ने वो डन होने चाहिए ने प्रॉपरली, बिकॉज नेल के उत्ते प्रॉपर आर्ट वर्क जोड़ा है वो होना चाहिए है। नेल एक्सटेंशन जो ने वो बनवादियाँ ने लेडीज़, एंड स्पैशली जो तो इंस्टाग्राम से लेडीज़ ने गर्ल्स ने या स्पैशली इनफ्लुएंसर्स ने वीडियोज़ बनानिया शुरू की ना, वो अपने नेल्स फ्लॉन्ट कर करके दिखादियां ने गल करते करते कि देखो आप नेल्स अपने डन करवाए हुए ने। सो इस करके नेल आर्टिस्ट का जोड़ा काम है वह तो फिर वध गया बहुत ज़्यादा। सो अजकल बहुत ज़्यादा इन है डिमांड के हैगा ही हैगा है। ओके, सो ब्यूटी इंडस्ट्री के बहुत ही तेजी नाल वधदा होया नेल आर्ट का काम हैगा है, बहुत ही उमदा करियर हैगा है। कमाई की गल करिए शुरुआत दे विच तुसी एक क्लाइंट तो कुछ 100 रुपए लै सकते हो या 300 रुपए लै सकते हो, जिवें जिवें थोड़ी स्किल जी वधदी है, थोड़ा तजुर्बा वधदा है, थोड़ी डिजाइन की क्वालिटी वधदी है, उदा उदा थोड़ी फीस भी वधदी चली जाती है। 500 to 1000, 1000 to 1500 एंड दैन सो ऑन। सो त्यौहारों के विहां के पार्टी सीजन के काम होर भी ज़्यादा वध जाता है, एंड अजकल ज़्यादा कोई ओकेजन ना भी हो फिर भी नेल एक्सटेंशन का काम बहुत ज़्यादा इन है, बिकॉज क्योंकि की है ना अपने आप

शेप बनाना, नेल्स नू फाइल करना, फिर नेल्स नू वड्डा करना, ऐ अजकल गर्ल्स नू हुंदा है थोड़ा इंस्टेंट काम चाहिदा हुंदा है, सो नेल्स एक्सटेंशन डन करा के वो अपना काम कर लैंदियां ने। रोजमर्रा दी जिंदगी दे विच वी कोई इवेंट नहीं भी है ऑफकोर्स उन्हां नू नेल्स एक्सटेंड करवाने ने, एंड इन केस नेल्स एक्सटेंड नहीं भी करवाने, एक्सटेंशन नहीं भी लगवानियां, तो सिंपल नेल्स उत्ते भी आर्टवर्क जो है अजकल गर्ल्स नू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 500 रुपए आराम नाल खर्च लैंदियां ने गर्ल्स हर महीने हर हफ्ते भी अपने नेल आर्ट करवाउण दे लई। सो वाई नॉट, जे तुहाडे हाथ दे विच इदां दा हुनर है, तुहानू इंडस्ट्री अट्रैक्ट करदी पई है, एंड इन केस तुहानू लगदा है कि तुसीं काम बहुत ही एक पैशन दे नाल कर सकदे हो, तां फिर इह काम इह करियर तुहाडे लई बहुत बहुत ज्यादा एप्ट हैगा है। सो बेसिकली तुसी घरों भी काम कर सकते हो, जे घरों काम करोगे तो खर्चा तो घट जाता है, तुहानू प्रॉपर अपना स्टूडियो नहीं बनाना पैंदा, मतलब घर दे विच ही स्टूडियो बन सकता है, बाहर किते प्रॉपर्टी लैके या कोई ऑफिस लैके खर्चा नहीं करना पैंदा, तुसी घर दे कोने ते छोटा जिहा अपना स्टूडियो जिहड़ा है वह बना सकते हो नेल आर्ट का, एंड बचत भी जी इदा वध हो जाएगी। बाद विच तुसी अपना स्टूडियो वधिया वाला खोलो किते बाहर, तो उत्थे अपने अंडर स्टाफ भी रख सकते हो। तो अजकल कई नेल आर्टिस्ट जिहड़े ने वर्कशॉप्स लैंदे ने, ऑनलाइन क्लासेस अजकल बहुत ज़्यादा नेल आर्ट दियां, वैसे तो यह एक हाथ की सफाई का काम है, इस करके तुसी ऑफलाइन क्लासेस लो कितों की प्रॉपरली जाके, ता ही बहुत एक तुहाडे हत्थां विच ओह हुनर जिहड़ा है वह ग्रो करेगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी लोग लगाते हैं, एंड अपने जो नेल्स के प्रोडक्ट भी जो तुसी यू नो मुकाम पर पहुँच जाओगे, अपने नेल्स के परसनलाइज प्रोडक्ट्स भी जो वेच सकते हो, मतलब कमाई के रस्ते एक नहीं अनेक हो जाते हैं फिर उस तो बाद। पर एक गल याद रखो, इस फील्ड के विच सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं काम आता, क्रिएटिविटी जी है ना वो ज़्यादा विकती है। ऑल राइट, कितना फाइन तुसी वर्क किया है वो ज़्यादा विकता है। सो हर नवा जो डिज़ाइन है ना तो हानू भीड़ तो वक्खरा बनाउंदा है, दैट मीनस कि तुसी बहुत छेती ग्रो करोगे इंडस्ट्री दे विच। सो जेकर हुनर हैगा है, शौक हैगा है, वधिया करियर इस बन सकता है, तुसी बन सकते हो रियल आर्टिस्ट, बिकॉज कई बार ना एक छोटी जी जी कह सकते हैं कि एक बिगनिंग है ना वड्डे वड्डे सुपनियां नू एक रंग जो है दे सकती है। ओके, प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच फिलहाल अज आपां बहुत सारी गल्लां कीतियां ने, पर गाने जिहड़े ने उह आपां उह भी बहुत सारे सुने ने। सो चलो प्रोग्राम दा लास्ट जो गाना है उह आपां सुनीए, क्योंकि जदों जो वुमेन है, हर वुमेन फाइनैंशियली इनडिपेंडेंट होएगी, मतलब आप पैसे कमाएगी ते आप अपने लिए जोड़ेगी, अपना खर्चा भी करेगी, तो उहदे विच आएगा कॉन्फिडेंस, ते कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर बस मौजा ही मौजा। सो ऐसे गल ते गाना इंजॉय करो, एंड स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो, RJ गरिमा है तुहाडे नाल।

102.7 MHz आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम होम स्वीट होम ते आ हुण सुनदे आ प्रोग्राम मिड डे मैलडीज सुनदे रहो 102.7 MHz आकाशवाणी एफ एम रेनबो।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है मिड डे मैलडीज। सो द मैलडीज नो एंजॉय करो, क्योंकि की है ना एक मौका हुंदा है, मौका हुंदा है वो एक कुछ मिनट्स हुंदे ने जिदे विच आपां तुहानूं लैके जाने आ उन्हां पुराने गानियां दे विच, तरानियां दे विच, नगमियां दे विच, एंड वो फ्लैशबैक जो है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी तुहानूं दिंदा है। सो प्रोग्राम मिड डे मैलडीज विच बने रहो नियॉन एफएम रेनबो विद मी आरजे गरिमा, बिकॉज़ नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो है मुकेश की आवाज़ दे विच। स्टे ट्यून्ड।

वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम. आकाशवाणी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा. सो क्या ही खूबी बखूबी एक गाना जरा लिखा हुआ है, बिकॉज इन दिस मूवी जीनत तमान नो पूरा अप्सरा, मतलब एक्चुअली नॉट इन द फिल्म पर इस गाने दे विच जो एक इमेजिनेशन है एक्टर दी, जीनत तमान नो प्रॉपर अप्सरा एंड संगीती देवी एंड पता नहीं की बहुत ही ब्यूटिफुली डिफाइन जो है किया हुआ है. एंड सुने ही बहुत लग रही थी जीनत तमान इन दिस यू नो सॉन्ग. बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट था बहुत ही डिफरेंट सीगा, सबनों पता है. पर जिस तरीके नाल भी किसी भी एक्ट्रेस नू बहुत ही ब्यूटीफुल जो दसना हुंदा सीगा ते उस टाइम बहुत ही अलग अलग बहुत ही डीप वोकैबुलरी यूज की जाती सी. तो जिस तरीके मतलब

जो एक करैक्टर है एक फीमेल नूं किस तरीके नाल प्रॉपर अप्सरा दी तरह डिफाइन किया जाता सीगा उहदा एक होर एग्जाम्पल आपां सुनांगे बिकॉज गाने का नाम है ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल सो किशोर दा तां गाना एक होर इंजॉय कर लिए स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो मिड डे मेलोडीज विच आरजे गरिमा बनी हुई है थोड़े नाल

सो मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, ये मोहम्मद रफी साहब ने कहा था, लेकिन किशोर कुमार ने पूछा था कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो सो फिलहाल एक्चुअल गाना होने चले आ रहा है थोड़े वाल इन प्रोग्राम मिड डे मैरिडीज। आज गरिमा है थोड़े नाल।

जिस गाने दी शूटिंग तो बाद आशा पारिक जी ने क्या सी भी एक गाना अल्लाह मेरी तौबा आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे तो हाड़ा अपना मिड डे मेलोडीज विद मी आरजे गरिमा सो यस आशा पारिक जी आफ्टर शूटिंग दिस सॉन्ग काफी ज्यादा नाराज सीगे कॉस्ट्यूम्स बोला है कि कॉस्ट्यूम्स वधिया नहीं सीगे ये वो उस बाद जो गाना शूट हो गया उस तो बाद भी काफी सारी कन्फ्यूजन सी आशा पारिक जी के जहन दे विच कि पता नहीं बैड इमेज ना बन जाए इस गाने तो बाद एंड ऑल दैट पर एक गाना इन्ना आइकॉनिक बन गया उतो दी इन्ना ज्यादा इन्नी ज्यादा अप्रिसिएशन जो है आशा पारिक ने मिली पर उस तो भी ज्यादा आशा जी नू मतलब जो आशा भोसले है उन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलिया सी फिल्म फेयर अवार्ड मिलिया सी सो दिस सॉन्ग हैज बिकम आइकॉनिक कई बार बहुत सारिया कन्फ्यूजन होंगे सानू जहन दे विच कि आप चंगा करते पे कि नहीं सही करते पे कि नहीं पर टाइम दसदा है कि साडा जे काम वधिया होए तां सानू बहुत सारे फ्रूट्स टाइम जरूर दिंदा है एंड फिलहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो आकाशवाणी एफएम रेनबो ते बने हुए हो तुसी आरजे गरिमा दे नाल प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़

0: 102.7 MHz Akashwani FM Rainbow te tusi sun rahe ho program Midday Melodies. Aao hun sunde haan pradeshik khabran. Us to baad theek 1:50 te program Midday Melodies jari rahega. Sunde rahe 102.7 MHz Akashwani FM Rainbow. 1:50
1: ए आकाशवाणी है खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव पहला चुनवियां खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान आधारित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम बारे एक्ट युआपा तहत दहशतगर्द ऐलानिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रगट किया है कि अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरीडोर 2029 के अखीर तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत और इसराइल विचकार दुवाला निवेश समझौता BIA आज तो लागू हो गया है। भारत और इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेलिया जाएगा। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ

0: सागर साहिबा, मिर्जी दी बकी हवावा नु चीर दे होया पलां च तेरे वीर तो कोई दूर निकल जाएगी।
1: जस चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।

हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी कर देखते हैं। हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। नींद पिछली सदी से जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं। रोज हम इस अंधेरी धुंध के पार काफिले रोशनी के देखते हैं। बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, आइए जहर पी के देखते हैं। हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। राहत इंदौरी साहब दिया गजल है। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है। तुसी बने हुए हो FM रेनबो ते 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

चाक जिगर के जी लेते हैं, सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं। जगजीत सिंह आवाज दे विच सी सुन रहे सी गजल। प्रोग्राम द लाज शायर है दे विच बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए ने जी। और उन्होंने मैसेजेस नूं सी शामिल करना शुरू कर दें जी। सब तो पहला मैसेज आया है प्रेम मार्केट बठिंडा तो अमरजीत जसल दा। इन्होंने बहुत सोहनी शायरी सानू भेजी है कि गिन तो लेते हैं उंगलियों पे गुनाह, गिन तो लेते हैं उंगलियों पे गुनाह, रहमतों का हिसाब कौन करे। एक और शायरी भेजी है कि ए दुखड़ा भी सह जाना वा तेरे बाजों रह जाना वा, तेरे दिल दी जद मैं कहना कह के माड़ा पै जाना वा, जद तू मेरे वल नहीं ना वेंदी मैं फिर वेंदा रह जाना वा, अगे जाके छड़ दी तेरी मैं फिर इत्थे बह जाना वा, तेनू जे मैं भारा लगदा तेरे दिल तू लै जाना वा। ये शायरी भेजी है जी सोनू मलेरकोटला तो। बहुत सोहनी शायरी पंजाबी दे विच इन्होंने भेजी है। होर भी बहुत सारे मैसेजेस साढ़े तक पहुँच रहे ने। बठिंडा तो बसंत सिंह टेलर ते लवदीप सिंह जसल ने मैसेज भेजा है कि सज्जन आए आ कि मुड़ गए साडा दिल तक के दिल भरिया ना, ऐसी रही मुलाकात साडी असी दिल दी गल ना आख सके, ओही कुछ बोल के कहिंदे उन्हां तो भी सरिया ना, अख सज्जन दी ना सानू पढ़नी आई साडी अख नू उन्हां ने भी पढ़िया ना, चुप चपीते उठ के तुर गए सज्जन हथ जसल ने भी फड़िया ना। सो तुसी भी अपनी लिखी हुई शायरी या फिर जो भी शेर तुहानू पसंद ने किसी किताब दे विचो तुसी सानू भेज सकदे हो। नंबर है जी 9855 10 10 27 9855 1010027। मैं हाँ थोड़े दोस्त कुसुम थोड़े नाल।

दोपहर दे टाइम हो चुका है जी 2:34 ते 29 सैकेंड और मैं हाँ थोड़े दोस्त कुसुम थोड़े नाल प्रोग्राम चल रहा है जी दिलाज शायर है गल ते गल ना सुट्टो कोई इल्जाम साडे वल ना सुट्टो असी माड़े जा चंगे ऐसे तुसी जुबान ना सुट्टो आज दी मैं फिल कोल बैठी है कल ना बैठे ऐसी पैड़ी बात ना सुट्टो गोपी जी ने शायरी भेजी है रेरू तू हुशियारपुर तो पाली जी भेजते ने नैणा दे नाल नैण मिला के दिल दी धड़कन सुन सजना इश्क मेरे दियां तारां दे विच रूह अपनी नूं बुण सजना एक बारी बस अपना कह दे सारी उम्र निभावांगे सच्चे प्यार दी खातर मैनू अपना हाणी चुन सजना इश्क में गिरना है अंजाम बाकी है मर्ज हरे हैं दिल के निशान बाकी हैं दिन बीते हैं किसी गैर की राह तकते तकते रात में किसी अपने की पहचान बाकी है बैठा हूँ लब पे किस्से तेरे लिए गुनाह इश्क की दास्तान बाकी है जी रहे हैं इश्क में एक सदी ओढ़े हम एक सदी इश्क में मरने की चाह बाकी है थक के बैठे हैं निगाह ये रुकती नहीं लंबी रातें हैं सुबह बाकी है अब तक हारे हो हर मुकाम पर निलय हर उल्फत में जीत का फरमान बाकी है निलय जोशी दी शायरी तुसी सुन रहे हो दिलाज शायर है प्रोग्राम दे विच कुसुम दे कोलों

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दे।

0: Ahí van. Ahí va.
1: फूलों की जब चाह मुझे थी तब कांटे भी नहीं मिले, जब शशि की थी चाह मुझे तब जुगनू भी ना कहीं निकले। आशा और निराशा सब कुछ खो में जग में घूम रहा, अब पग पग पर मिलते मुझको क्यों ये इतने फूल खिले।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा। इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। स्वागत करती हूं अपने दोनों

0: विशेषज्ञों का। डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
1: अस्थमा ज्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो है वो सुकड़ जाते हैं
0: जी।
1: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
0: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी अपना नाम बताएं सर।
1: जी रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी क्या जानना चाहते हैं आप?
1: जानकारी चाहिए मैम, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछे की जो पसलियां की हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है, देखिए जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर ना?
2: नहीं देखो, अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं ऐसा तो नहीं।
2: हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी एहतियात बरते, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है, और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें, हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को जरा से इस मौसम में खांसी जुकाम होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
2: देखिए अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक।
0: जी,
2: जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है
0: जी।
2: और ये मेनली इन्फेक्शंस के कारण होता है, लेकिन ये जहां तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है ये अस्थमा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
0: जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं?
3: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस बाहर निकालने में तकलीफ ज्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज बनती है।
0: अच्छा।
3: कई बारी तो ये सीटी की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज यही कहता है कि सीटी की आवाज है, और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और खराब हो जाती है।
0: तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज्यादा अटैक करता है, ऐसा कहा जा सकता है? बताएं अजीत सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में।
3: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ होती है ज्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में, तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कई बारी अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो, ठंड में जाओ, तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
0: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए।
3: एकदम से अपने पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
0: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर?
2: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे

0: पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या?
2: मौसम बदलाव के दो चीजें हैं, एक तो मार्च अप्रैल में है मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है, पेड़ का जो पोलन है जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सर्द गर्म और जब मौसम बदलता है तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर रेहान सर, अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर को भी नमस्कार, मैं यामिन भाई रेडियो वाला।
1: जी जी जी बताएं।
3: मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिनके मम्मी पापा को अस्थमा या ये सांस की बीमारी होती है, क्या उनके बच्चों में ये बीमारी होने का संभावना रहती है, ये बताएं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं बच्चे?
0: देखिए, जो अस्थमा होता है उसके दो कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, जेनेटिकल भी रहता है। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर एक पेरेंट को अस्थमा है तो लगभग चांसेस 20-30% रहते हैं कि वो बच्चों में जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो उस केस में चांसेस 40-60% भी हो सकते हैं। तो आपको यही है, जो ट्रिगरिंग फैक्टर जैसा कि हम बता रहे हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहें और प्रॉपर इनहेलर का जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखें।
1: सर, ये भी अब सवाल उठता है कि अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं कॉल लेने से पहले आपसे पूछ रही थी।
0: देखिए, सबसे प्रथम तो जो पेशेंट रहता है अस्थमा का, उनके जो ट्रीटमेंट होता है तो सबसे पहले तो पेशेंट अस्थमा अटैक आते ही सीधे बैठ जाना है। उसके बाद में जो इनहेलर होता है, इनहेलर के 2-3 जो पंप होते हैं वो इनहेलर के वो लेने होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और अगर हर 20 मिनट में ये रिपीट करना है, अगर सही नहीं होता है फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे।
1: तो ध्यान रखें कि बहुत नॉर्मल उसको ना लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक है अस्थमा का तो तुरंत अवेयर हो जाएं और हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और तमाम जानकारी जो लें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो।
1: जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। कहाँ से बोल रहे हैं सर?
4: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी, शुभ नाम बता दें अपना।
4: वीपी सिंह नाम है मेरा।
1: जी वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
4: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मुझे मैंने अपने टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी। खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया, अब खांसी है नहीं, लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं पेन होता है चेस्ट के।
1: अच्छा।
4: हल्का सा, खांसी जोर से नहीं आती है जैसे नॉर्मल तरीके से, कई बार खांसी आ जाती है
1: जी,
4: उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में, तो ये क्या कौन सा लक्षण हो सकता है ये मेरा जानना।
0: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज आती है। अच्छा। जबकि जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस चीज को।
4: मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है।
1: जी, आपकी उम्र क्या है सर? उम्र क्या है आपकी लगभग?
4: मेरी एज है 65+।
1: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में, देखिए किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो सर?
0: जी, आपको मेन चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
4: पेन नहीं रहता चेस्ट में।
0: जी,
4: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल।
0: जी जी,
4: उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी।
0: जी जी,
4: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी,
4: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई।
0: जी जी,
4: और ट्रीटमेंट भी चला मेरा।
0: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप?
4: दिक्कत ये है जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
0: जी जी

0: तो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर।
1: देखिए वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज़। एक सेंडोक्साब ऐड करना चाहेंगे।
2: अभी डॉक्टर रेहान ने पहले भी बोला, अगर तेज़ी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है। हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
3: जी आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें।
2: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है कि छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक से सांस बंद हो जाता है। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफ़ी संबंध है। लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम हैं उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे। साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इन्हेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं वो साथ के साथ चलेंगे, दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे। और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग दो किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं। थोड़े महंगे टेस्ट ज़रूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और उसको

0: थोड़े महंगे टेस्ट ज़रूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं
1: जी। और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी।
0: कई बार दोनों इकट्ठे साथ के, दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज्यादा है
1: जी। क्या फेफड़ों की स्थायी बीमारी होती है अस्थमा, या इसे ठीक किया जा सकता है?
2: देखिए, जो अस्थमा जो होता है वो स्थायी तो हम नहीं कह सकते
1: जी।
2: जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बच्चों में हो रही है तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में हो रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग आराम से
1: मतलब जिनको अनुवांशिक है ये बीमारी, वो भी ठीक होने की गुंजाइश बनती है।
2: जी जी, ठीक तो नहीं कह सकते, बस हाँ। कंट्रोल रह सकती है बीमारी, आराम से अच्छा जीवन जी सकता है मरीज, जो अस्थमा का मरीज होता है वो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि बच्चे हैं, जैसे बड़े हैं वो अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, तो क्या उनको हर वक्त इनहेलर साथ में रखना चाहिए?
2: देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में जरूर रखें, साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज़ करना है वो, ताकि उनको बता सकें, तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज़ को।
1: तो बहुत सावधानी बरतिए, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: एक हमारे गाँव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो इटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कॉज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा, इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जेटिक और पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी विजिंग होती है सोते हुए, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं, लिखती हैं।
2: देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर, जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
1: जी।
2: तो इन सब चीजों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज में।
1: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही है होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
2: जी जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस तो जब भी अटैक होता है उस टाइम साथ में लें, और स्टीरोइड्स का जो इनहेलर जो होता है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करें ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
4: निर्भय सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी
4: डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना, खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है।
0: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
4: गले गले में रहता है बलगम बस।
0: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको वो बार बार साफ करना पड़ता है।
4: घबराने की तो कोई बात नहीं,
0: घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा।
4: नहीं, वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वही कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से कुछ पता करता हूँ।
0: नहीं, ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
1: जी, और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर, सीजीएचएस न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ
1: जी।
2: पहले आप स्ट्रेट मैन सीधा होके बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ में लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज करिए, माउथ में रख के फिर 2 से 3 बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में 2 से 3 पफ लेने हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर स्टीरॉयड यूज करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, मेरे को अस्थमा है काफी साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
3: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती एक दवाई वाला लेती हूँ, तो ये कहते हैं कि पंप ज्यादा नहीं लिए ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
3: हम कमलेश्वर में ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा, जी जी, कोई बात नहीं। हाँ बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से। जी डॉक्टर साहब, हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं, और कुछ कहना चाह रही थी आप?
3: और मैम, मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है? आंखों दिन नींद भरी रहती है और रात को आती नहीं है, धूप में खुल जाती
1: है। ये भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब?
4: आपका
1: बताएं
4: जो सर दर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आंख के आसपास भारीपन रहते हैं तो हाँ, ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहाँ तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है, ज्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
3: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के एक दवाई वाला, एक छोटी सी गोली खाती हूँ। तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
2: जी जी जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
3: अच्छा,
2: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा।

0: वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है। हाँ
1: अच्छा
0: हाँ हाँ क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
2: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। इनको आपने बता दिया है, हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रही हैं, आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर।
0: देखिए जो इनका पहला सवाल है हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए
2: जी
0: क्योंकि ये अस्थमा का अटैक हो सकता है।
2: हाँ
0: दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रोल एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन, रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज़ करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया वो रिलीवर मेडिसिन होता है।
2: जी
0: एक होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या लंबे टाइम तक डिजीज को प्रिवेंट करता है, तो उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरोइड्स जो कि इन्फ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
2: तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी सर बताएं क्या
3: मुझे
2: सवाल
3: पूछना
2: है
3: कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है और ब्रोंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन भी बनाया कि नहीं?
0: देखिए जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो
4: अभी
0: कोई
4: तक नहीं है,
0: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आगे आ जाए।
2: तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, खास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है क्या, कि ठंडी चीजों से बचना है? गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीजों से बचना है?
0: जी जी बिल्कुल, इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीजों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठंडा पानी हो गया वो एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए तो डिजीज कंट्रोल में रहती है और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
2: लेकिन अब एक समस्या आती है कि क्या अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो कंटिन्यू चलती रहेगी या क्या कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीजें?
0: देखिए अगर लंबे टाइम तक जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें।
2: तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई हैं?
1: देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
0: जी,
1: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सांस की बीमारी है या कुछ और कारण है।
0: जी, घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है? मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं।
1: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी।
0: जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि खान पान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
2: जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पॉट्स, तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम जरूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पावर बढ़ेगी। कहते हैं आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है, बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफी फायदा आएगा।
0: हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं।

0: जी हाँ, अस्थमा विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार आप सभी का जो सवाल है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आ चुका है रमेश कुमार जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत धन्यवाद। कैन अस्थमा पेशेंट कैन लीड नॉर्मल लाइफ?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अस्थमा पेशेंट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस लें, सही तरीके से लें, सही टाइम पे लें। जैसा कि हम देखते हैं ओपीडी में, मैंने देखे हैं 85 इयर्स 90 इयर्स के पेशेंट भी आते हैं, अस्थमेटिक हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से दवाई लेते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं वो लोग।
0: जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सीजनल अस्थमा होता है, जो ज्यादातर पोलन से रिलेटेड होता है, जैसे दिल्ली में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और दिल्ली में उसके बाद अब प्रदूषण से दशहरा के बाद जनवरी तक चला है पिछले साल, वो उस किस्म के अस्थमा में जब नॉर्मल हालात हो जाते हैं, जैसे अब मई में एक दो हफ्ते में बिल्कुल पोलन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी लीड कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी। सिर्फ जब ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं तब दवाई लेनी पड़ती है, बाकी टाइम वो जैसे बोला था हार्ट स्पॉट्स भी कर सकता है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, नेजल पॉलिप, साइनसाइटिस और एलर्जी का अस्थमा से क्या रिलेशन है?
2: नेजल एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि नाक की एलर्जी होती है, उसकी वजह से नेजल पॉलिप्स होते हैं ज़्यादातर, आसपास जो फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे नाक में पॉलिप होते हैं। नाक के पॉलिप मतलब नाक के अंदर अंगूर जैसे छल्ले बन जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद रहती है, स्नीजिंग होती है, साइनसाइटिस जहाँ नाक के आसपास साइनसिस में बलगम इकट्ठी हो जाती है। इनके दमा अस्थमा से दो ताल्लुक है, एक तो पॉलिप्स और अस्थमा, ये दोनों ही चीजें बाहर के ट्रिगर फैक्टर से प्रवोक होती हैं। लगभग 60% चांस है कि मरीज अगर जिसको पॉलिप है उसको अस्थमा भी होगा, प्लस अस्थमा वाले मरीज को पॉलिप्स भी हो सकते हैं। दूसरा, साइनस से अगर रेशा गले में गिर के छाती में गिर रहा है तो वो भी फेफड़ों को इरिटेट करके दमे को प्रवोक कर सकता है।
0: जी,
2: एलर्जी दोनों में ही रहती है, ट्रिगर फैक्टर एलर्जी दोनों में ही कॉमन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, लंबी खांसी चल रही है और सूखी खांसी है तो अक्सर लोग फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ये अस्थमा का लक्षण तो नहीं है?
2: ये पेशेंट मरीज से पूछना पड़ेगा, लंबी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ सीटी बजती है नहीं बजती है, खासकर बलगम है या सूखी है, लेटते हुए, सारी खांसी ज्यादातर लेटने से खराब होती है, चाहे साइनस का रेशे बलगम से हो, अस्थमा से हो। तीसरा फैक्टर खांसी का है पेट का तेजाब ऊपर आके जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी। क्यों?
1: जी ये एपिसोडिक रहता है, ये तीनों सिम्टम जो रहते हैं एपिसोडिक।
2: अगर अकेले लंबी चल रही है बिना इन तीनों के सिम्टम के तब ये अस्थमा नहीं
0: हो सकता। जी, अब डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका डिफरेंस कैसे किया जाए?
1: जी ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। मेनली जो कार्डियक की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि जो अस्थमा होता है उसमें फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो बेसिकली अस्थमा के केस में ये सीटी की आवाज रहता है, जबकि कार्डियक केस में सीटी की आवाज नहीं बल्कि शरीर में सूजन रहती है, पांव में सूजन रहती है, वो अलग फैक्टर्स होता है, इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं उस चीजों से।
2: और उसमें खड़खड़ की इसी भी आवाज रहती है छाती में?
1: जी
2: सीटी की जगह।
1: जी ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए, और बाकी जो स्पेशलिस्ट के पास जाके जो टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिफरेंस कर देगा उस चीज को।
0: जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं उनको किस तरह की और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने मौसम का भी आपसे जिक्र किया कि मौसम बदल रहा है, और हमारे जो श्रोता थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक बार शॉर्ट में उनको बता दीजिए कि किस तरीके से इस मौसम में उनको सावधानी रखने की जरूरत है।
1: देखिए, अभी जो मौसम है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, थोड़ी गर्मी हो रही है, काफी सीजनल है, तो इस सीजन में पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका भी अभी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर जब भी निकले थोड़ा मास्क लगाकर थोड़ा परहेज रखें इन चीजों से, बाकी जो इनहेलर होता है वो हमेशा अपने साथ रखें, जब भी उनको अटैक आए उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। और अस्थमा जो है एक कंट्रोलेबल डिजीज है, इससे बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?

0: सबसे बड़ी चीज़ है जो एलर्जन है, अगर पता लग जाता है एलर्जी टेस्ट से कि क्या आप कुत्ते से एलर्जी है, बिल्ली से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है,
1: या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम दो।
0: स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कई किस्म की बरमूडा ग्रास और आसपास घास होती है, उनसे अवॉइड करना सबसे ज़रूरी है। आपने मास्क के बारे बोला था, यही है कि थोड़ा सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है,
2: जी
0: पर अगर प्रदूषण में जाए तो वो N95 अगर मास्क पहने तो बचाव हो सकता है, पर फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वैसे ही उनको सफोकेशन है तो मास्क पहना नहीं जाता।
1: मास्क तभी पहने जब वो एक्सपोजिंग
0: एक्सपोजर
1: एनवायरनमेंट में जा रहे हो।
0: पे जाए।
1: जी जी
2: जी तो बहुत ही यहाँ पे उम्दा चर्चा रही है कि उम्मीद है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाभ जानने को मिले हैं, और जो भी पेशेंट है उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा। अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुंची है तो उसका लाभ आपने जरूर लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम। बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
0: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया।
2: जी सर,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: की हवा पर उछीर दे मैं, परंतु तेरे वीर तो कोई दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हाले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।

0: हेलो जलंधर प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो जी। टाइम हो चुका है 4:22:29। अगले कॉलर दोस्त आओ उन्हां नाल गलबात करदे आं। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहा है?
1: प्रवीण बोल रहा, गोपाल नगर जलंधर
0: जी। प्रवीण जी की हाल ने जी? चाल भी वधिया, चाल वधिया रहनी चाहिए है। वैसे हाल फिर आपे पता लग जांदा है ना।
1: बिल्कुल जी, परमात्मा ने आपे ही जे हाल वधिया नहीं है ते फिर तमी ओदी रजा च रहना चाहिए जी।
0: प्रवीण जी, अजकल टाइम दी जे गल करिए, बहुत ही लोगां दा टाइम जड़ा वो फोन ते जांदा है। रेडियो सुनने वाले तो तुहाडे वर्गे बहुत घट लोग रह गए ने। ज्यादातर टाइम फोना ते रील्स देखण ते जांदा है लोगां दा। ओदे बारे की कहोगे?
1: नहीं, वो फिर इस तरह वा जिदा कि हाल है ना, जिदा मर्जी ला लो। टाइम जिन्हां को फिर मोबाइल घट ही चलाउंदे आ, सिर्फ रेडियो ते ही सारा मतलब के टाइम करी दे गाने सुन के।
0: जी जी, ए वधिया वैसे ना।
1: बाकी काम च बिजी रही दा, काम काफी हैगा जी।
0: ओके, ते फिर तुसी भी किसे नूं इदां कहने हो वी मेरे कोल तां नहीं टाइम हैगा वी यार किते जाण दा?
1: नहीं जी, पता कि जिथे जाना ना उथे टाइम कढणा पैंदा है
0: जी। बैलेंस होके तां ही चलदा फिर बंदा है ना।
1: हां जी, उंज भी जिहड़े जरूरी काम करते आ आपां टाइम कड्डी दा तां ही हुंदा जे टाइम ना कढांगे काम की होणा आ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हुण दुकान दे विच अहीं बैठे आ, जे दुकान खुली रही टाइम ना दवांगे वे काम थोड़ा चलना हैगा जी।
0: जी जी जी जी,
1: हां जी।
0: बहुत सोहणी गल कही। ते अज गीत केड़ा सुनना?
1: जे तुसीं देश प्रेमी दा ला दिओ जाते हित जाओ। एक मैडम रिक्वेस्ट है
0: जी,
1: अपने एक दोस्त है वाजा बदल बदल के शमी वर्मा जी आउंदे आ, इन्हां का अपनी सही आवाज ते आया करो।
0: ठीक है जी, तुहाडा गीत तुहाडे तक पहुंच रहा है, तुसी एंजॉय करो।
1: ओके।
2: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे जी?
0: हाँ जी नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार बोल रही हूँ, मलेरकोटले तो।
1: जी राकेश जी, बहुत स्वागत है तोड़ा। इन्ने
0: धन्यवाद
1: सोहने शहर
0: जी।
1: तो बोल रहे हो तुसी? मैं
0: हाँ जी
1: कह इन्ने सोहने शहर तो बोल रहे हो।
0: हाँ जी हाँ जी, मलेरकोटले तो जी 5-6 महीने बाद कॉल लगी है जी अज।
1: ओ अच्छा जी, की ते
0: हाँ
1: इन्नी
0: जी,
1: देर
0: पहले
1: क्यों
0: मैं
1: लगा
0: तो
1: दिती?
0: नवा नवा चलिया सी, वो तो हफ्ते बाद लग जाती सी,
1: अच्छा
0: हूँ
1: जी,
0: तो 5-6 महीने हो गए, रोज डायल करते हैं, लगते ही नहीं।
1: चलो मेहनत होगी फिर था ना।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: किन्ना टाइम
0: मेरे
1: लगा
0: कोई
1: फोन
0: छह
1: डायल
0: घंटा
1: करन
0: हो
1: नू?
0: जाता है एवरेज।
1: किन्ने टाइम तो डायल कर रहे सी?
0: मैं बस हूँ दूजी तीजी बारी दबिया का
1: ओके
0: लग गया।
1: देखो, हर काम नू करन ले

0: जी हाँ दोस्तों, असी अज मना रहे हाँ सीताराम राजू जी का जन्मदिन। ते दिन जेड़ा है वो बहुत ही ज्यादा वधिया चढ़िया है। अज बारिश वाला दिन है ते मैंने लगता
1: बिल्कुल
0: है चाह पकौड़े जेड़े है वो तो सारे ही खा रहे हैं। इस दे
1: बिल्कुल
0: नाल ही एक होर खास जानकारी तुहाडे लई, क्योंकि अज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे भी है, यानी जुलाई का जेड़ा पहला शनिवार है वो अज चढ़ गया है ते हुण तां लथण ही वाला है।
1: बिल्कुल
0: ते हर साल जुलाई दे जिहड़े पहले शनिवार हुंदा है ना, उस दिन मनाया जांदा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस दिन दा उद्देश दुनिया भर विच सहकारिता, यानी किद्दां तुसीं एक दूसरे नाल कोऑपरेट करके काम करते हो, तुहाडा टीम वर्क, तुहाडी इक्वालिटी, ते एक दूजे उत्ते कीता होया भरोसा, ते तुहाडा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ते तुहाडी सांझी तरक्की नूं मनाउंदा है। ते इह दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबली। जे तुसीं तरक्की करना चाहते हो तो सारयां नूं नाल लैके ही तुसीं इह तरक्की कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नूं इनकरेज करता है इह दिन।
1: बिल्कुल। जे इस दिन की गल करिए, इस दिन का बेसिकली ये चीज़ है कि कोऑपरेटिव्स होंगे की है। कोऑपरेटिव्स होंगे जेडे ग्रुप ऑफ पीपल कट्ठे आते हैं, तो कट्ठे काम करते, कट्ठे बिजनेस रन करते हैं, तो कोई ये बॉस नहीं होंगे, कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होंगी। हर किसी की आवाज़ दे जिहड़ी क्या कहिंदे है ओपीनियन जो भी हुंदा है, उन्हां दी एडवाइस हुंदी है, हर किसी की सुनी जाती है। चाहे तुसी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपए नाल करो, चाहे उस तो ज़्यादा दे नाल करो, ताड़ी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस बिजनेस दे विच ओनी ही रहिंदी है जिन्नी नीडेड है।
0: बिल्कुल
1: ते उस दे नाल ही असीं जे गल करिए कि ये क्यों इन्ना मैटर करता है, फार्मर्स लई बहुत मैटर करता है, क्योंकि अमूल गुजरात दे विच बहुत सारे फर्टिलाइजर्स दे विच काम करते हैं, तो फार्मर्स नू बहुत हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव। उस दे नाल वर्कर्स जिहड़े वीवर्स, ड्राइवर्स या विमेन्स हुंदे हैं, या जिहड़े सैल्फ हेल्प ग्रुप्स हुंदे हैं हैंडलूम्स दे, उहदे नाल भी कोऑपरेटिवस काम करते हैं। तो उस दे नाल ही सोसाइटी वास्ते भी बहुत सही रहिंदे ने कोऑपरेटिवस, प्रॉफिट्स वधांदे ने, पीपल दे उत्ते, लोकां दे उत्ते फोकस करते हैं, इन्ने प्रॉफिट या इन्ने पैसे ते फोकस नहीं करते।
0: बिल्कुल। पर मैनू लगता है कोऑपरेटिव्स नाल काम करन ते नाल ही नहीं सिर्फ चल रहे, तुसी जदों रिस्पोंसिबिलिटीज़ नू शेयर करते हो, तुसी एक दूजे उत्ते ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, ते तुसी सोचते हो कि असी जो भी कीता असी नाल मिल के कीता, हर एक दा इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तुसी इक्वालिटी विच बिलीव करते हो, एक दूजे दी रिस्पैक्ट करते हो, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ
1: ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ।

0: सो दोस्तों वेलकम बैक टू यू वाणी। तो हुण आपां लैके आए हाँ साडा न्यू सैगमेंट जो कि है की है
1: वर्ड एक्सप्रेस।
0: यस, जिहदे विच असीं तुहानूं दस्सांगे एक बहुत ही खास बहुत ही यूनीक शब्द जिहनूं जिहदा मतलब जानन वास्ते मेरे ख्याल तुसीं हुण रेडी हो चुके होगे। तां प्रिया दस्सो किहड़ा शब्द है अज्ज?
1: मतलब शब्दों की दुनिया नू डाइव इन करने लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज दा शब्द वो शब्द है जो जिंदगी दी रियलिटी नू दसदा है। सानू साडे स्ट्रगल साडी जिहड़े चैलेंजेस ते मस्ती सब याद करा देगा वो शब्द। ते वो शब्द है ओडिसी।
0: सो ओडिसी शब्द दी जे असी गल करिए, ओडिसी एक इंग्लिश शब्द है ऑफ कोर्स। ओडिसी का मतलब हुंदा है बहुत ही लोंग ते बहुत ही एडवेंचर ना परी हुई जर्नी, जेड़ी कि चैलेंजेस ना भी परी है एडवेंचर्स ना तो परी ही है। सिर्फ ट्रैवल दी गल नहीं हो रही, इत्थे स्ट्रगल दी गल हो रही है, ग्रोथ दी गल हो रही है, ते एक

0: गर्ल्स लाइक टू स्विंग।
1: जी हाँ, गर्ल्स ने स्विंग करना है ते बैग ता जरूर ट्रेंडी होना चाहिए है। ते मॉनसून विच सब तो वड्डा इशू ए रहिंदा है कि साडा बैग पे जांदा है ते बस फोन जरूरी डॉक्यूमेंट सब पानी विच।
2: बिल्कुल।
1: ते इसलिए मैनु लगदा है वाटरप्रूफ बैग्स ता है ही है। आजकल एक नवा ट्रेंड चलिया वाटर रेजिस्टेंट बैग्स दा है ना।
2: अच्छा।
1: मतलब कुछ हद तक बचा लेंदे है, पूरे वाटरप्रूफ नहीं हुंदे।
2: ओके।
1: क्योंकि वाटरप्रूफ बैग्स दी क्वालिटी दा किया जांदा इशू रहिंदा थोड़ा जिहा।
2: हां जी।
1: इसलिए वाटर रेजिस्टेंट बैग्स वाले नूं भी तुसी जा सकते हो, एक गुड ऑप्शन है वो तुसी चूज कर सकते हो। जे फोन तुहाडा सेफ रहे, मैनूं तो सब तो ज्यादा प्यार अपने फोन दे नाल है भाई, कि वो सेफ रहना चाहिदा है, फिर मेरा सारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वधिया रहिंदा है, नहीं तां फिर तां फैशन दी मैनूं बिल्कुल नहीं पई।
2: और वैसे जे कुड़ियां वास्ते असीं दसीए एक्सेसरीज ज्वेलरी दे विच, ते मैनूं लगदा इहो जे वेदर च तां बहुत ही लाइट ज्वेलरी पानी चाहीदी है, बहुत ही लाइट मिनिमल चीज़ां पाओ, क्योंकि पानी दे विच तां खराब भी हो सकदी है कुछ चीज़ां। ते वैसे जे तुसी मेकअप वगैरह दी गल करो, भी अजकल तां पूरा वाटरप्रूफ मेकअप वगैरह आंदा है, ते तुसी ओ यूज कर सकदे हो।
1: ते थोड़ा जिहा मिनिमल रखियो, मतलब बहुत ज्यादा केकी ना होवे, क्योंकि जिन्ना मर्जी वाटरप्रूफ होवे जे बारिश दा मौसम है कुछ ना कुछ तां विचों खराब होएगा ही तुहाडा। ते जे तुसी बिल्कुल मिनिमल जिहा टचअप कीता होएगा, लाइनर लूइनर अवॉइड करियो
2: बिल्कुल,
1: ते बिल्कुल मिनिमल जिहा टचअप होएगा बस एक टिंट ते क्लिपर ते परफेक्ट लगोंगे तुसी, क्योंकि वैसे ही कुड़ियां सोहणियां लगदियां जदों बरसात च भिजदियां होण।
2: बिल्कुल। ते इस दे नाल ही वैसे जे असीं नॉर्मली गल करिए, क्योंकि जे तुसी कोई इहो जिहा आउटफिट पाया जिहड़ा थोड़ा बारिश या मानसून फ्रेंडली नहीं है, तो तुसी हमेशा एक अपने नाल एक विंड शीटर या फिर एक रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट जैकेट जरूर अपने नाल रखो, कि तुसी कभी भी वो वेयर कर सकते हो जो एकदम बारिश आ रही है ता,
1: या फिर
2: बहुत हेल्पफुल रहेगी।
1: बिल्कुल। या फिर तुहाडे कोल अम्ब्रेला होवे, छतरी भी,
2: अम्ब्रेला तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: बहुत। एक रुमाल जरूर रखियो, सी बहुत छोटी जी चीज है पर जरूर अवॉइड कर दिने आसी आजकल रुमाल नू, रुमाल जरूर रखियो, वो हल्का फुल्का जे पानी दा छिट्टा पैज भी जावे तो तुसी आराम नाल उनू हटा सकते हो। ते बस ये छोटी जिहां जिहड़ियां टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो, ते मानसून नू एंजॉय करो, चाह पकौड़े खाओ, ते प्यारा जिहा
2: गीत सुनो
1: भी। बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू यू वाणी। ते हुन स्टार्ट होने वाला है जी साडा न्यू सेगमेंट जो कि है दिमागी दंगल, जिदे विच असी तुहानूं कुछ रिडल्स पुछांगे, कुछ कहावतां पुछांगे जिहदा तुसी सानूं जवाब देना है। ते साडे नाल गल भी कर सकदे हो तुसी, ते गल करन वास्ते तुहानूं फोन करना पएगा, जवाब देन वास्ते तुहानूं फोन करना पएगा 01812342174 ते। चलो भाई फिर दसो प्रिया इन्हनू इन्हां दी पहली रिडल, पहली कहावत।
1: क्या बात है, मतलब दिमागी दंगल सैगमेंट होवे ते रिडल्स ते जेड़े टंग ट्विस्टर्स होण ते कॉल्स ना आने दा हो ही नहीं सकदा। लिसनर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुंदी है उन्हां दे विच इस सैगमेंट दे लई। ते पहली बजारत जेड़ी अज दी है वो है, मैं तोड़ा ना हाँ, मैं तोड़ा हाँ पर मैनू तोड़े नालों वध होर लोग वरतदे है, दसो मैं कौन हाँ। मैंने लगता है थोड़े कंफ्यूज हो गए, पर तुसी आंसर देना है क्योंकि मैंने पता तुसी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तो नंबर मैंने लगता है तुसी नोट कर लिया होएगा 01812342174।
0: तो कर दो असी एक छोटा जा सॉन्ग चलाने हैं, तो जल्दी जल्दी सानू फोन करो ताकि असी तुहाडे नाल गल कर सकीए।

0: जी हाँ दोस्तों, कॉल्स तो सानू बहुत सारिया आ रही हैं, तो तुहाडे कॉल का भी इंतजार है। तो हुण दूजे जिहड़े कॉलर है साडे, ओह साडे नाल जुड़ चुके ने, आओ उहनां दे नाल गलबात करते हैं। हैलो,
1: नमस्कार जी।
0: हैलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है युववाणी दे विच। कौन गल कर रहा है?
1: शुक्रिया, प्रवीण बोल रहा है गोपाल नगर जलंधर।
0: जी प्रवीण जी, तुसीं सुणीए साडी पुजारत बड़े ध्यान नाल, मैनूं लगदा है
2: बिलकुल सही जवाब देता।

जैसे पगडंडियां सड़कें नहीं होती लेकिन रास्ते होती हैं, जैसे घड़ियां समय नहीं होती लेकिन समय का हिसाब होती हैं, जैसे कागज पर बने पेड़ जिंदा नहीं होते लेकिन पेड़ों के होने का भरोसा होते हैं, वैसे ही कुछ चीजें अपने रूप में नहीं अपने अर्थ में जीवित रहती हैं, जैसे हम और आप। शाम के 6:26 हो रहे ने, लव यू जिंदगी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं हाँ कुसुम थोड़े नाल। सो इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां एक सोहने जे गीत दे नाल, ते उस तो बाद

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सनती महारा का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम विज्ञानक पड़ावर पहुंच रही लागू किया गया है। सरकार ने कीमत स्थिरता लिए प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ा के 2125 रुपए फी क्विंटल की थी। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मोहाली के पिंड सनेटा विखे कायम देहाती सेहत सिखलाई केंद्र का उद्घाटन किया। पंजाब पुलिस ने साइबर अपराध खिलाफ मुहिम की होर तेज, एक साल में 729 गिरफ्तारियां। भारत ने इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। सनती महारा ने किया है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम रातों रात लागू नहीं किया गया, सगों एक चंगी तरह योजनाबद्ध पड़ावार अते विज्ञानक तौर ते संचालित प्रक्रिया राही लागू किया गया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदियां इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दे साबका चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने किया कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम नूं 2018 विच ढांचागत चर्चा अते हिस्सेदारां दे सलाह मशवरे लई जनतक खेतर विच रख्या गया सी। उन्हें भी कहा कि इस पहलकदमी विज्ञानक सबूतां ऑटोमोबाइल निर्मातावां एसोसीएशन ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया अते सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वालों कीतियां व्यापक परखां दी हमायत प्राप्त है। इस मौके बोलदा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के चेयरमैन अते कार्यकारी उपमुखी विक्रम गुलाटी ने कहा कि इथेनॉल एक साफ सुथरा इंधन है जो चंगी संचालन कुशलता अते उच्च गति की पेशकश करता है। उन्हें कहा कि एक अजिहे युग विच जदों लोग जलवायु तब्दीली दियां चुनौतियां दा सामना कर रहे ने, यह बूटियां तो प्राप्त एक जीरो कार्बन ईंधन है। सरकार ने कीमत स्थिरता लई प्याज की खरीद कीमत विच 13% का वाधा किया है। खपतकार मामले

खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय मुताबिक खरीद कीमत हुण 1875 रुपए फी क्विंटल तो बाद के 2125 रुपए फी क्विंटल हो गई है। सोधी हुई खरीद प्रति कीमत आज तो लागू है। मंत्रालय मुताबिक इस नाल प्याज किसानां नूं बेहतर लाभ मिलेगा अते खरीद यत्नां च भी मदद मिलेगी। सरकार दे कीमत स्थिरता बफर लई प्याज की खरीद भारतीय राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सहकारी मार्केटिंग संघ लिमिटेड नाफेड अते भारतीय राष्ट्रीय सहकारी खपतकार संघ लिमिटेड NCCF राही जारी है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग दे साल 2025-26 लई दूजे अगाऊ अनुमान मुताबिक प्याज दा उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन तो वध होण दा अनुमान है। मंत्रालय ने भी कहा कि मौजूदा भंडार काफी है अते इस समय प्याज की कोई थोड़ नहीं है। प्याज दा भारत भर विच औसन तन परचून मुल 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज की बरामद आम वांगे ते इस साल जून के महीने दौरान करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन प्याज की बरामद हुई है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज डॉक्टर भीम राव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली दे कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अधीन मोहाली दे पिंड सनेटा विखे कायम देहाती सेहत सिखलाई केंद्र RSTC का उद्घाटन किया। उन्होंने मेडिकल इंटरना लिए बनाए जाने वाले होस्टल अते चार दीवारी की उसारी का नींह पत्थर भी रखा। इस मौके संबोधन करदिया डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार देहाती खेतरां विच सेहत सहूलतां नूं होर मजबूत बनाउण लई लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स मोहाली वालों कायम यह आधुनिक केंद्र देहाती लोगों नूं म्यारी सेहत सेवावां मुहैया कराउण दे नाल नाल मेडिकल विद्यार्थियों नूं भाईचारा आधारित सिखलाई भी प्रदान करेगा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने आले दुआले दे पिंडां दे लोकां नूं इस केंद्र विखे उपलब्ध माहिर डॉक्टरां दीआं सेवावां दा वध तों वध लाभ उठाउण दी अपील कीती। उन्हां कहा कि चंगी सेहत लई समें सिर जांच अते जागरूकता बेहद जरूरी है। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब दे पुलिस दे डायरेक्टर जनरल DGP गौरव यादव ने कहा कि राज साइबर क्राइम डिवीजन ने पिछले 4 सालों विच साइबर अपराध विरुद्ध लड़ाई अते बेगुनाह नागरिकां दी राखी विच बहुत हद तक कामयाबी हासिल कीती है। पंजाब पुलिस वल्लों सूबे भर विच साइबर डिफेंस नेटवर्क नूं मजबूत करके साइबर अपराध खिलाफ कीतियां जा रहियां कारवाईयां बारे जानकारी दिंदिया उन्हां दस्सिया कि करीब 1 साल विच पंजाब पुलिस ते राज साइबर क्राइम डिवीजन ने 29 साइबर अपराध पुलिस थाणियां विच 956 FIR दर्ज कीतियां अते वख-वख साइबर धोखाधड़ी मामलों विच 729 मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। उन्हां ए भी जानकारी दित्ती कि सख्ती नाल लागू करन दे नाल नाल पंजाब पुलिस ने रोकथाम उत्ते भी ध्यान केंद्रित कीता है अते सूबे भर विच करीब 657 नागरिक जागरूकता प्रोग्राम चलाए ने तां जो लोकां नूं ऑनलाइन धोखाधड़ी अते घोटालियां बारे जागरूक कीता जा सके। नागरिकां नूं अजिहियां घटनावां बारे तुरंत 1930 उत्ते फोन करके सूचित करन लई कहा गया है। नंबर एक बार फिर सुन लो 1930। उन्हां कहा कि पंजाब पुलिस साइबर अपराध तो जनता दी राखी अते लोक जागरूकता प्रति अपनी वचनबद्धता जारी रखेगी। पंजाब दे समाजिक सुरक्षा ते स्त्री ते बाल भलाई मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने अज अपने विधानसभा हलका मलोट दे पिंड चंडावाला ते पिंड मलोट विच लोक मिलनी प्रोग्राम तहत लोकां दीआं समस्यावां सुणियां ते मौके ते निपटारा कीता। पिंड जंडावाला विखे लोकां दीआं मुश्किलां सुणदिआं उन्हां दस्सिया कि इस पिंड दे विकास लई सरकार वल्लों करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करके विकास दे काम करवाए गए ने अते 21 किलोमीटर लंबे 3 रजवाहियां ते खालियां नूं पक्का करवाया गया तां जो सिंचाई अते लोकां नूं पूरा पानी मिल सके अते सरकार वल्लों विकास दे काम चंगी पद्धर ते करवाए जा रहे ने तां जो उन्हां नूं सरकारी स्कीमां दा लाभ मिल सके। इस मौके उन्हें भी दस्सिया कि पंजाब सरकार लोकां दी भलाई लई लगातार नवे उपराले कर रही है अते मावां तीआं सत्कार योजना तहत औरतां नूं आर्थिक तौर ते मजबूत कीता जा रहा है। पंजाब सरकार ने शुद्ध दुध तंदुरुस्त पंजाब मुहिम तहत दुध विच मिलावटखोरी नाल नजिठण अते दुध दी गुणवत्ता बारे जागरूकता पैदा करन लई एक समर्पित टोल फ्री हैल्पलाइन 1800-1800-2202 कायम कीती है अते एक नोडल अफसर तैनात कीता है। नंबर एक बार फिर सुन लो 1800-1800
2202। इस मुहिम संबंधी जानकारी साझी करदिया पंजाब दे पशु पालन डेयरी विकास ते मच्छी पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने दस्सिया कि डेयरी विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2026 तो हुण तक 100

सो टाइम हो चुके जी 6:55:40। मैं कुसुम थोड़े नाल लव यू जिंदगी प्रोग्राम चल रहा सी ते हुण इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दा वेला हो गया है जी। जांदे जांदे बस इन्ना ही कहांगी कि रूह च मोती जिहा सुच्चापन, सोच च फकरां वाला नंगापन, पिंडे च किताब जी खुशबू ते मत्थे च जवाक जी बेफिक्री होवे तां समझो दुनिया दी मलकियत तुहाडे पैरां च है। सो फिलहाल मैनूं दिओ जी आग्या अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ते खुश रहना किसी भी हाल दे विच, बस खुश रहना। अगले सफर ते थोड़े नाल होणगे आज वंदना ते हुण मैं कुसुम लैनी आ जी आग्या। चंगा जी, सत श्री अकाल।

प्रोग्राम चल रहा है जी फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच तुसी मेरे नाल बने हुए हो अपनी दोस्त वंदना दे नाल। ते असी अज गलबात कर रहे हैं जी अपने टाइम दे एक बहुत ही खूबसूरत शब्दां नू लिखण वाले, शब्दां नू अपने एक कलम दे नाल ना उतारण वाले पेज दे उत्ते बहुत ही खूबसूरत गीत, अमर गीत लिखण वाले भरत व्यास जी दे बारे विच। ते उन्हां दे नाल गल करदे होया मैं तुहानूं होर चीज़ कुछ दसना चाहवांगी उन्हां दे बारे विच कि भरत व्यास जी सीगे जिहड़े उन्हां ने लगभग 700 दे करीब गीत लिखे सी, पर सिर्फ गिनती ही उन्हां दी पहचान नहीं सी। उन्हां ने जदों गीत लिखे तो उन्हां दी असली पहचान ए सी कि उन्हां दे गीत समें दे नाल पुराने नहीं होए। अज भी जदों असी उन्हां दे ए मालिक तेरे बंदे हम या फिर ये कौन चित्रकार है सुनते हाँ तो सिर्फ गीत नहीं लगते हो, इदां लगता है कि जिंदगी नूं वेखण दा एक अलग ही नज़रिया है। 4 जुलाई 1982 नूं भरत व्यास जी जिहड़े सीगे साडे विचों दी चले गए सीगे, पर उन्हां दी कलम अज भी जिंदा है। क्योंकि देखो दोस्तों गीत तां बहुत सारे लोग लिख लैंदे ने, पर गीतां नूं अमर बनाउणा हर एक दे हिस्से नहीं आंदा, वह हर एक दे हिस्से की गल नहीं होंदी है। तो भरत व्यास जी ने सानू सिर्फ यादगार गीत नहीं दिते, उन्होंने सानू ये भी सिखाया कि सादगी विच भी किन्नी गहराई हो सकती है, किन्ना खूबसूरत एक एक शब्द उन्होंने गीतों के हुंदा सीगा। तो अज उन्हां दी पुण्यतिथि ते फिल्मी दुनिया वालों भरत व्यास जी नू साडे सारे परिवार वालों दिलों श्रद्धांजलि है जी। जी हाँ, तो उन्होंने गीतों के इस सफ़र दे विच जड़ा मैं जिस सफ़र दे ते मैं तुहानू लैके जा रही हूँ उदे विच एक अगला गीत ये कौन चित्रकार है जड़ा कि एक अमर गीत है अगेन जड़ा असी सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम तो इंजॉय करते हैं मेरे नाल इस प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच।

हां जी, एक बारी फिर तो आ गई है जी वापस। मैं गलबात कर रहे हां जी कैरी ऑन जट्टा 4 दे बारे विच। ते कैरी ऑन जट्टा दी सीरीज जड़ी है ना, ओ वाकई बहुत ज्यादा वधिया रही है हुन तक दी जर्नी ता। ते गल करांगे अज कैरी ऑन जट्टा 4 दी। जदों मैं पहली बारी कैरी ऑन जट्टा 1 मतलब की फर्स्ट मूवी देखी सी ता हस हस के पागल हो गए सी असी लोग। ते आई होप तुसी भी उतना ही इंजॉय किया होना जिन्हां ने मूवी देखी सी। वैसे सारे ने देखी होनी है मैनू लगता है मूवी, क्योंकि वो देखने वाली एक्चुअल मूवी सी। ते गल करांगे जी कॉमेडी फिल्म की, सब तो वड्डी जिहड़ी जिम्मेदारी हुंदी है ना एक्टर्स की तो हुंदी ही हुंदी है, पर उहदे नाल नाल डायरेक्टर की भी बड़ी इंपोर्टेंट एक जिहड़ी हुंदी ना रोल हुंदा उहनां दा, क्योंकि डायरेक्टर दे उत्ते ही डिपेंड हुंदी है पूरी मूवी की स्टोरी लाइन ते सारी स्क्रीन प्ले वगैरह। ते उहदे वास्ते जी असीं क्रेडिट देवांगे समीप कंग जी नूं, क्योंकि जदों इंडस्ट्री च कॉमेडी की गल होवे ते समीप कंग दा नां ना आवे ए तां जी हो ही नहीं सकदा। जी हाँ, उन्हां दी अपनी एक वक्री पछाण है जी कॉमेडी मूवीज़ दे उत्ते, उन्हां दा बहुत वधिया होल्ड है, फास्ट पेस, क्लीन ह्यूमर ते कन्फ्यूजन ते एंटरटेनमेंट दा इदां दा वधिया तड़का लगवांदे ने ना अपनी मूवी दे विच कि कोई भी बंदा बोर हो ही नहीं सकदा। जी हाँ, तो इस स्टाइल नूं कायम रखते हुए नज़र आए ने कैरी ऑन जट्टा 4 दे विच समीप कंग, जिथे जी मतलब फिल्म किते भी बिना लोड़ तो रुकदी नहीं दिखदी। इदां लगता है कि बैक टू बैक जड़े सीन टू सीन ट्रांजिशन जड़ा होया ना काफ़ी स्मूद है, कॉमेडी का फ्लो बहुत वधिया बनाया होया। तो ये नाल नाल जी जड़ा स्क्रीन प्ले है वो गल करिए तो राइटर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली पैटर्न ही फॉलो किया है। एक एक मतलब ना उत्थे कन्फ्यूजन जरा सब तो ज़्यादा एंटरटेनिंग जड़ा पार्ट हुंदा है वही हुंदा ना कि जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है सीरीयस जे सीन दे विचों दी भी ह्यूमर किद्दां कढ़ के लियाना है, यह जी बहुत वधिया तरीके दे नाल कीता गया है। जी हाँ, तो ये जड़ा एक्सपैरीमेंट है ये बहुत हद तक सफल भी होया उन्हों का, और ये फ्रेंचाइजी एक तरह के नाल सीरीज जड़ी कंटिन्यू चलती आ रही है सेम ही लाइन के उत्ते है, पर पूरा जस्टिस किया है जी मूवी ने इस पूरे तरीके दे नाल। ये जड़ी पूरी उन्हां दी एक फ्रेंचाइजी मतलब कह सकते हैं कि एक जड़ी स्टोरी लाइन इको तरीके की जड़ी चलती आ रही है मूवीज़ दे विच, बट हर एक मूवी दे विच कुछ फ्रैशनेस का तड़का किस तरीके दे नाल लगाया जाता है ये समीप कंग जी नूं बहुत चंगी तरह नाल पता है। जी हाँ, तो बिल्कुल जी एक गल जरूर है कॉमेडी विच ना टाइमिंग स्क्रिप्ट नाल ता नहीं आंदी, मतलब एक अपना रोल है स्क्रिप्ट दा भी, टाइम ऑब्वियसली टाइमिंग ते स्क्रिप्ट दा रोल है, पर सब तो वड्डा काम जड़ा हुंदा है स्क्रीन प्ले दा भी हुंदा है। ते जो सीन 2 सेकंड लम्मा होवे ता जड़ा जोक है ना थोड़ा जा फ्लैट भी हो सकता है, इस करके इस चीज़ दा भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख्या गया है। अगेन एक वधिया जिहा गीत प्ले करदे हां, गलबात कर रहे हां जी असीं कैरी ऑन जट्टा 4 दी, ते गिप्पी जी दी आवाज़ दे विच एक खूबसूरत जिहा गीत इंजॉय करदे हां, ते आनी हां मैं फटाफट।

हां जी, वेलकम बैक जी। ते तुसी सुन रहे हो फिल्मी दुनिया, ते गल अज हो रही है कैरी ऑन जट्टा 4 दे बारे विच। ते गल असी कीती मूवी दे डायरेक्टर साहब दे बारे विच, जिहड़े कि तुहानू सोचण दा समां घट ते हसण दा वक्त ज्यादा दिंदे ने। उहदे नाल नाल स्टार कास्ट दी गल करनी तां बहुत जरूरी है जी, क्योंकि चुण चुण के ल्यांदे ने हीरे उहनां ने पंजाबी इंडस्ट्री दे विचों दी अपनी मूवी दे विच। ऑब्वियसली जिहड़े कंटिन्यू भी कर रहे ने कुछ, ते कुछ जिहड़े ने नवें चेहरे भी जुड़े ने नाल। ते सब तों इंपोर्टेंट पहला चेहरा जदों असीं कैरी ऑन जट्टा दी गल करीए ते उह है जी गिप्पी गरेवाल। गिप्पी गरेवाल जी ने सारे तरह के, मैनू लगता है कि हर जॉनर दी मूवीज़ कीतियां ने। उन्होंने एक्शन मूवीज़, थोड़ियां सीरियस मूवीज़ भी कीतियां ने, पर सब तो ज़्यादा मैनू जिहड़ी पसंद है उन्होंने चीज़ वो है उन्होंने कॉमेडी। उन्होंने टाइमिंग, वो अपने एक इनोसेंट फेस के नाल बहुत ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल कॉमेडी जिहड़ी है वो करते हैं, और बहुत ही स्मूथली होंदी है, एफर्टलैसली होंदी है। और इस बार भी उन्होंने इस चीज़ नू बहुत वधिया तरीके दे नाल निभाया है। ओवर एक्टिंग तो नहीं हुई है, पर बिल्कुल सही तरीके दे नाल ते सही टाइम दे उत्ते उन्होंने जिहड़ी कॉमेडी है उन्हें काम कीता है। ते हुण जी अगले स्टार इस ही कैरी ऑन जट्टा सीरीज दे बहुत इंपॉर्टेंट स्टार, ते किहदी गल कर रही हाँ मैं, तुसी आप इमेजिन करो। इमेजिनेशन दे विच आंदा है जी बिन्नू ढिल्लों जी के बारे में। बिन्नू जी की गल कि ना हो जे गल असी करिए कैरी ऑन जट्टा की गल। जी हाँ, वो एक इदा का करैक्टर, एक इदा का एक्टर जड़ा बिना बोले जिदे कैमरा उन्होंने मूँह वल जाए तो बंदे का उदा ही हासा निकल ही जाता है बई, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रैशन ही इन्ने जबरदस्त ने। मैनू तो लगता वो एक्सप्रैशन किंग ने बई साडी इंडस्ट्री दे, बहुत ही जबरदस्त। और कहिंदे जदों ना जे कॉमेडी दे उत्ते कोई सिलेबस लिखण दी गल आएगी ना, तो मैनू लगता है कि बिन्नू ढिल्लों दे उत्ते तां पूरी किताब लिखी जा सकती है एक, क्योंकि सच्ची जिद्दां ही वो स्क्रीन दे उत्ते आंदे ने बंदे दा बिना उन्होंने डायलॉग तो ही हासा निकल जाता है कि बिन्नू जी आ गए ने। ये हुंदी है असली कॉमेडी कि बिना किसी नू बोलिया एक शब्द भी असी कॉमेडी कर जाइए, वह भी एक्सप्रैशंस दे नाल। ते अगेन इस बार भी उन्होंने कामयाब ने जी, इस चीज़ दे विच बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी उन्हां दी, उन्हां दे डायलॉग्स, उन्हां दे रिएक्शन, सारिया चीज़ां जड़ियां ने बहुत हासा पाते हैं। तो इहदे नाल नाल सरगुन मेहता की गल करिए, वह भी अपनी एनर्जी दे नाल सीन्स नू काफ़ी बैलेंस करते हैं। कॉमेडी विच एक नैचुरल जड़ा तरीके दे नाल रहना जड़ा है ना वो आसान नहीं हुंदा, पर ओवर द टॉप जाण दी बजाय सिचुएशन दे नाल नाल चलदे हुए नज़र आते हैं, इस करके कैमिस्ट्री जड़ी है ना वह काफ़ी अच्छी लगती है उन्हां दी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਇਲੋਗਸ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ।

ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ ਤੇ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ जी हाँ प्रोग्राम शुरू हो गया है जी नेट वाणी ते आज इस प्रोग्राम दे विच इस टेक्निकल सफर दे विच तुसी मेरे नाल बने रहना है यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल बने रहना है जी हाँ इंटरनेट नेट वाणी कदी सोचा सीगा कि असी इस तरह दे प्रोग्राम्स भी करने ने या फिर सुनने ने क्योंकि इंटरनेट ते टेक्नोलॉजी दे नालों तां मैं इंटरनेट दी गल जरूर करांगी कि ये इन्ने ज़्यादा वास्ट हो गए ने और साडी जिंदगी दे विच इन्ना ज़्यादा खास जगह बन चुकी है ना दी कि मैनू इदां लगदा है कि जदों असी रात नू सौण तो लैके सवेर दे मतलब रात नू सौण तो लैके सवेर दे उठण तक तां ऑब्वियसली असी रात नू अखां तां बंद करांगे पर रात नू आखरी टाइम तक जद तक असी सौंदे

हां जी, एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम नेट वाणी दे विच। अच्छा, असी अज गल कर रहे हैं नेट वाणी दी, ते मैं तुहानू ए दसना चाहवांगी कि तुसी गूगल ते आखरी वार सर्च कदों कीता सी। शायद तुसी सर्च कीता होएगा कि सब तो बेस्ट पिज़्ज़ा मेरे नेड़े कित्थों मिलता है, या ट्रेन दी टाइमिंग की है, पासपोर्ट अप्लाई किद्दां करिए, शुगर फ्री रेसिपी की है, है ना। पर सोचो जे गूगल तुहानू सिर्फ 10 ब्लू लिंक्स दिखाउण दी जगह दे उत्ते तुहाडे नाल बैठ के गल करे, फॉलोअप सवाल पूछे कि भाई किद्दां करना है, की करना है, फिर कंपैरिजन करके तुहानू देवे, ट्रैवल प्लान बना के देवे, शॉपिंग कंपेयर करके देवे, ते रिसर्च जिहड़ी है तुहाडी समराइज करके देवे, तां फिर तुसी की करोगे भाई, तुहाडी तां बल्ले बल्ले हो जाणी, क्योंकि काम सौखा हो जाणा सारा। जी हाँ, ते कईयां ने शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं दिता होएगा, जदों असी गूगल दे उत्ते लिखदे आ ना सारी इनफॉर्मेशन, उहदे नीचे ही आंदा ए आई मोड, ते तुसी जदों ए आई मोड दे उत्ते अपनी इनफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू करदे हो, तां जी गूगल तुहाडे नाल गल्लां बातां भी करन लग जांदा, ते फिर तुसी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है उत्थे भी तां सर्च कर सकदे हो। और एक सब तो वधिया चीज़ जिहड़ी है उस ए आई मोड दे उत्ते भी, कि तुसी बोल के भी अपना क्वेश्चन जड़ा है वो पूछ सकते हो, फिर वो तुहाडे नाल गलबात करेगा, अगों दे तुहानू काउंटर क्वेश्चनस भी होणगे, फॉलोअप्स भी होणगे बहुत सारे। तो कहिंदे पए ने जी आने वाले टाइम दे विच दा इमोशंस भी होर ऐड हो जाने ने उहदे विच। वैसे तो फिलहाल हजे भी इमोशंस ने, जे तुसी थोड़े जे गुस्से नाल गल करदे हो या फिर किसी भी तरीके दे नाल, ते इमोशंस जड़ा ना वो ए आई समझण लग गया है। ते इस करके सिर्फ गूगल नू कमांड ना दिओ हुण समझण वास्ते, तुसी गूगल दे नाल गलबात करो, डिस्कशंस करो, ताकि तुहानू होर बैटर होर नॉलेज वालियां गल्लां मिल सकन। पर इहदे वास्ते ना एक बड़ी वड्डी समस्या है, जे तुसी नोट कीता होए अज कल ए आई दे बारे च सारे जणे बहुत ही गल्लां करदे ने जी, ए आई आ गया है हुण तां जी नौकरियां बहुत चलियां जाणियां, इदां हो जाणा उदां हो जाणा, क्योंकि ए आई ने तां जी दिमाग बहुत ज़्यादा लिआंदा है, ते दिमाग लियान दे नाल साडियां नौकरियां या साडी आने वाली जनरेशन जिहड़ी है ना उहनां वास्ते प्रॉब्लम हो जाणी है, जबकि इदां दा कुछ नहीं है जी। एक चीज़ मैं तुहानूं दसदी हां, सब तो ज़्यादा जरूरत है सिर्फ ए आई नूं समझण दी, क्योंकि बनाया तो अल्टीमेटली इंसान नहीं है ना ए आई भी, ते इस करके ए आई तो डरन दी जरूरत नहीं है। ए आई नूं यूज़ किद्दां करना है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं, सानूं उस चीज़ दे उत्ते काम करन दी जरूरत है। ते सब तो जरूरी चीज़ ए है कि असी जदों कुछ पुछ रहे हैं ना ए आई नूं, ते असी जो पुछांगे उन्हें सानूं उसे तरीके दा जवाब देना है। कोशिश करिए कि असी बहुत सीधा स्पष्ट पुछिए जो असी जानना चाहते हाँ, पर असी पुछदे कुछ होर ही हाँ, तो हुंदा की है कि फिर जो उन्हूं बेचारे नूं समझ आता है, क्योंकि है तो आफ्टरऑल मशीन ही ना, तो इस करके जो उन्हूं समझ आता है फिर वो ही दस दिंदा है। अच्छा, एक हासे वाली चीज़ मैं तुहानूं दसांगी गाना चलाने तो पहला, क्योंकि गाने तो चलने हैं, बड़ी हासे वाली चीज़ है अजकल ना, एक रील जिहड़ी है, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के उत्ते ए आई नूं लैके ही है। ते जी बीबियां की करदियां है कि एक लेडी ने अपनी वीडियो पाई, मैं स्क्रोल कर रही थी, तो मैं समझने की कोशिश की और लिटरली मेरा हस हस के पेट दुखन लग गया उस वीडियो नू देख के। हुण ए आई है, तो ए आई की जो गल करते हैं असी, तो अजकल पिक्चर क्रिएट करन दा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तुहानू सारयां नू पता होना है। वो लेडी ने अपने हसबैंड दे नाल खड़े होकर एक फोटो क्लिक की सी, तो उन्हें ए आई नू कहा कि जी मेरी तो मेरे हसबैंड की हाइट जिहड़ी है वह सेम सेम है, मेरे हसबैंड नू थोड़ा जिहा लम्मा कर दो, ते उन्हें उदे हसबैंड नू 7 फुट लम्मा कर दिता। हुण तुसी अपने हसबैंड की उन्होंने हाइट ही नहीं दसोगे कि इन्ने बाय इन्ने का कर दो, भाई इन्ने इंच वधाना है या इन्ने फीट की हाइट करनी है, तो उन्होंने तो भाई कुछ नहीं पता, फिर उन्हें तो बना देना जिन है कि नहीं। फिर उन्होंने लग्या कि ज्यादा ही लंबे हो गए ने, तुसी इदां करो, ए आई नू कहंदी है कि तुसी इदां करो, ए

हां जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम नेट वाणी दे विच। FM रेनबो दी कड़ी दे उत्ते वक्त हो गया है जी, ठीक 8:21 ते 22 सेकंड्स ते असी चल रहे हैं जी टेक्नोलॉजी दे सफर दे उत्ते। मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल तुसी गल्लां बातां अगे अगे वधा रहे हो, सुन रहे हो, नवीं गल्लां सिख भी रहे हो। जी हाँ, उम्मीद कर रही हूँ मैं कि तुसी इन्हां गल्लां नूं बहुत ज़्यादा ध्यान दे नाल सुनोगे। तो पहले इस तो जड़े मैं इनफॉर्मेशन ही दसी कि तुसी AI नूं प्रॉपर जड़ी है ना अपनी इनफॉर्मेशन देनी है कि तुसी चाहुंदे कि हो, ये ना होवे कि हादसे दा मड़ासा बन जावे ते कहिंदे ने ना पुलाव बना चलीए ते उहदा कड़ाह बन जावे, इदां नहीं करना असी। खैर चलते हैं जी अगे। तो जो असी AI की गल करते हैं ना, असी करते हैं जी गल तो इंटरनेट की दुनिया के उत्ते कि बई सानू इंटरनेट के उत्ते AI यूज़ करना चाहिए इनफॉर्मेशन वास्ते। तो साडे दिमाग दे विच इको ही ऐप आती है, ChatGPT। तो इदा की गल नहीं है जी, हूँ ChatGPT है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा वास्ट है, डेली कुछ ना कुछ नवी ऐप्स, नवी टेक्नोलॉजीज और नवे सॉफ्टवेयर जड़े ने ना वो आ रहे हैं लगातार। इस करके मिनटों का काम घंटों में क्यों करना, जब घंटिया का काम मिनटों में करने वास्ते साडे कोल इन्नियां सारियां ऐप्स जिहड़ियां ने अवेलेबल ने। तो एक चीज़ वैसे मैं होर तुहानू कहना चाहवांगी कि अजकल वाकई इन्नियां ज़्यादा ऐप्स ते इन्नियां चीज़ां आ गईयां ने ना, तुसीं घंटिया का काम जिहड़ा ना वो मिनटों में कर सकते हो, पर फिर भी असीं करके कुछ राजी नहीं। हुण देखो जी, अजकल इदां दीआं ऐप्स भी आ गईआं ने जिहड़ीआं न्याणियां वास्ते सारे सॉफ्टवेयर रेडी करके, मतलब पूरा दा पूरा जे तुसीं प्रोजेक्ट बनाउणा है ना, प्रोजेक्ट रेडी करके नोट्स भी बना के देणगीआं कि हुण तां पढ़ मर लो। पर न्याणे कित्थे हटदे आ, उहनां नूं तां जी रीलां देखण दी फुरसत नहीं, गेमां खेलण दी फुरसत नहीं, उह तां या तां टीवी या मोबाइल ते मोबाइल दे विच गेमां ते रीलां ते जी खेलण दा तां उहनां नूं पता ही कुछ नहीं कि बाहर जाके खेलना भी कोई चीज़ हुंदी सीगी जिहड़ी कि पहलां हुंदी सी किसी जमाने दे विच, विचारियां ने देखे नहीं होणा बाहर भी खेलिया जांदा है। तो बस फिर ये कीता कराया सारा कुछ मिलता इंटरनेट हुण तां पहलां तां मावां करके दिंदियां सीगियां, मम्मी पापा करके दिंदे सी, छुट्टियां दे विच बड़िआं दे लगे होणे ने माँ प्यो बेचारे मत्था मारन वास्ते ते न्याणे लगे होणे ने मोबाइलां दे विच। पर हुण की कीता जा सकदा, हुण करना तां पैणा ही है, तो सब कुछ तैयार मिलिया पर साडे बच्चे जिहड़े ने साडे घरां दे ओह पढ़ के राजी नहीं, करके राजी नहीं कुछ, तो असीं की करिए फिर हुण इस गल दे विच। पर चलो कोई गल नहीं, हुण फिलहाल असीं अपनी गल करदे हां कि असीं की करना अगे नैटवाणी दे विच। ते मैं गल कर रही सी कि जी बहुत सारिया ऐप्स जड़िया ने ChatGPT तो अलावा आ चुकिया ने। हुण जिद्दां असी गल करिए एक नोटबुक LM नाम दे AI टूल दी, तुसी इहनू सर्च करोगे जदों गूगल दे उत्ते ते तुहानू मिलेगा नोटबुक, नोटबुक लिखोगे ते LM लिखोगे ते एक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

और इस प्रोग्राम दे विच, इस खूबसूरत जी शाम दे विच, इस शाम दी पहली गजल चित्रा सिंह जी दी आवाज दे विच सुनदे आ। प्रोग्राम शामी गजल दे विच मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल।

प्रोग्राम चल रहा है शामी गजल ते थोड़ी दोस्त वंदना इस सफर दे विच थोड़े नाल बनी हुई है। किंदे रात दी खामोशी विच ही सब तो ज्यादा शोर हुंदा है, शोर किसी दी याद दा। ते शायरी विच इंतजार नू सिर्फ किसी दे आउण दी उड़ीक नहीं मन्या जांदा, सगों ओ एहसास जिथे वक्त ता लंघ जांदा है पर दिल ओथे ही ठहरिया रहिंदा है। और इसी तरह का एक बेहद खूबसूरत शेर मोमिन खान मोमिन लिखते ने, कहते तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शेर कहता है कि जो इंसान इकला होता है ना उदों सब तो ज़्यादा उन्हों उसे इंसान की मौजूदगी या फिर कमी का एहसास होता है जो उदी जिंदगी विच सब तो ज़्यादा जरूरी होता है। ते कई रिश्ते दूरी नाल नहीं याद नाल जींदे ने, इसलिए शायद उर्दू दे विच एक लफ्ज़ है याद जो कई बार मुलाकात तो भी वद महसूस होता है। ते सुनते हैं एक अगली गजल प्रोग्राम शामे गजल दे विच इसे तरीके दे नाल, इंतजार करदे होया या मिलदे होया।

एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम शामी गजल दे विच। मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल तुसी इस प्रोग्राम दे विच बने हुए हो। रात कहिंदे जिन्नी वी डूंगी हुंदी जांदी है ना, इंसान उन्ना ही अपने आप दे नेड़े आंदा जांदा है। दिन दा शोर बहुत कुछ लुका लैंदा है, पर रात दी जिहड़ी खामोशी हुंदी है ना, ओ दिल दी हर आवाज सुनदी है। ते शायरी विच तन्हाई नूं कदे सज़ा नहीं मन्या गया, इस नूं अपने आप नाल मिलन दा वेला किया जांदा है। ते इस एहसास नूं बड़ी खूबसूरती दे नाल बयान करदे ने बहादुर शाह जफर जी। कहिंदे ने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, दयार मतलब धरती, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। आलम दा मतलब दुनिया ते ना पाएदार अस्थाई। ते इस शेर दा भावे है कि इस दुनिया दे विच ना कोई भी हमेशा नहीं रहिंदा, वक्त बदलदा है, हालात बदलदे ने, लोग भी बदल जांदे ने, इसलिए जो चला गया उसकी कसक हमेशा रह जाती है, पर जिंदगी का जड़ा सफ़र है वह अगे वधदा रहिंदा है। तो कई बार तन्हाई सानू कमज़ोर नहीं करती, सगों साड़ी असली पहचान नाल मिलाउंदी है। तो इस एहसास नू अगे वधांदे होया सुनदे हां ये खूबसूरत जी गज़ल।

प्रोग्राम चल रहा है शामी गजल ते एफएम रेनबो दी कड़ी दे उते इस वेले वक्त हो गया है 10:24 ते 36 सेकेंड्स। ते इस सफर दे विच तुसी मेरे नाल अपनी दोस्त वंदना दे नाल बने हुए हो ते असी गलबात कर रहे हैं अलग अलग एहसासां दे बारे च जज्बातां दे बारे च। सफर मुहब्बत तो शुरू होया, इंतजार तो लंघिया, तनहाई दे रस्ते ते भी तुरिया, पर हर रात दा एक सवेर नाल रिश्ता जरूर हुंदा है। ते उर्दू शायरी सिर्फ गम दी गल नहीं करदी, या फिर कोई होर भी शायरी जड़ी है वो सिर्फ गम दी गल नहीं करदी, उम्मीद दा दीवा भी जगाउंदी है। अज दी महफिल नूं असी समेटांगे अलामा इकबाल दे खूबसूरत जे शेर दे नाल, जिहड़े कहिंदे ने सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं।

अभी इश्क के इम्तहा और भी हैं। किन्नी सोहनी गल कही है ना उन्होंने कि जे एक सपना पूरा ना होवे तो जिंदगी उत्थे खत्म नहीं हो जाती, हर रात तो बाद एक नवी सवेर आती है, तो हर अधूरी कहानी तो बाद एक नवा सफा भी खुलता है। इसे उम्मीद नाल सुनदिया अज की महफिल की ये आखिरी गजल प्रोग्राम शामे गजल दे विच, इस तो बाद विच मिलते हैं अगले सेगमेंट एक प्यार का नगमा है दे विच।

मिले तो लगा जैसे दुआ कबूल हुई, तुम मिले तो लगा जैसे दुआ कबूल हुई, सोनी सी जिंदगी में फिर से बहार आई। अब हर शाम का एक ही मतलब है, तेरी याद आई और मुस्कान साथ लाई।

चांद भी आज कुछ ठहरा ठहरा सा है, चांद भी आज कुछ ठहरा ठहरा सा है, शायद उसे भी किसी का इंतजार है। हम तो हर रात तुम्हें सोचकर मुस्कुरा देते हैं, हम तो हर रात तुम्हें सोचकर मुस्कुरा देते हैं, यही हमारे इश्क का सबसे खूबसूरत इजहार।

अर्ज किया है, कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाऊं, कभी तुम पास बैठो तो जमाना भूल जाऊं, मैं तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाऊं, मैं तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाऊं। तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तो छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊं। सुन लिया एक बहुत ही खूबसूरत जा अगला ट्रैक, प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। ऐसा वादा करो अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, ऐसा वादा करो कि हमसे ना बिछड़ोगे कभी। नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही।

किसी का इश्क, किसी का ख्याल थे हम भी। किसी का इश्क, किसी का ख्याल थे हम भी। गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी।

का नगमा है दा एसी आखरी सॉन्ग ते इस सफर दे विच हुण तुहानू ओके टाटा बाय बाय कहण दा वेला हो गया है क्योंकि अज दा सफर जिहड़ा सी ओह इत्थे ही खत्म होएगा ते फिर मिलांगे किसे दिन किसे खास गलबात दे नाल किसे खास विचार दे नाल कुछ नवीं इनफॉर्मेशनस लैके कुछ नवे गीत लैके ते कुछ नवे जज्बात लैके तद तक दे लई मैनू दिओ इजाजत ते इंजॉय करो इस ट्रैक नूं ते इंजॉय करो अपना वीकेंड हेल्दी रहो चंगा खाओ ते चंगे तरीके नाल जियो।